आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। सवेरे के 5:58

0: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल

0: असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 100। रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। अब अगले कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। शास्त्रों में कहा गया है, प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है और कोशिश ऐसे करो जैसे सब आप पर निर्भर करता है। ये था आज का चिंतन। आइए सुने भक्ति रचनाएं।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंत्र एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बात

पुराने नए पुराने छह बजकर 6:35 पर कार्यक्रम संध्या रंजन का प्रसारण होगा। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। फौजी साथियों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 7 बजे से। इंद्रधनुष के अंतर्गत शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रोग्राम गुलदस्ता। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा नाटिका बजट एक कमाऊ बीवी का। लेखन मनोहर वर्मा का है, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:15 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9 बजे से। रात 10 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम छाया गीत। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 10:20 पर। झरोखा में ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 231। प्रसंग है अयोध्या कांड।

अयोध्या लौट जाने के लिए श्री राम के आग्रह भरे वचन सुनकर राजा जनक तथा मुनिवर वशिष्ठ को कुछ भी कह सकने में संकोच होता है। भरत गंभीर असमंजस की स्थिति में हैं। एक ओर हृदय में श्री राम के लिए प्रेम और आदर का सागर उमड़ रहा है तो दूसरी ओर है स्वर्गीय पिता तथा स्वयं श्री राम के वचन की मर्यादा पालन का दायित्व। अंत में धैर्यवान भरत के स्नेह जनित शोक संताप पर विवेक ने विजय पाई। हाथ जोड़कर उन्होंने बड़ों से क्षमा याचना करते हुए श्री राम से कहा, हे नाथ, आप माता पिता मित्र गुरु परम हितैषी तथा अंतर्यामी हैं। ऐसे स्वामी मैं ऐसा द्रोही हूँ जिसका कोई सानी नहीं। मोह के वशीभूत होकर मैं पिता और आपके वचन का उल्लंघन कर यहाँ आया हूँ। आपने मेरी ढिठाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया, मेरे दोष को गुण के रूप में स्वीकार कर लिया। आप जैसा कोई दूसरा स्वामी नहीं है।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और स्वागत है पंडित एसएल कंडारा जी का, तबला संगतकार श्री संतोष मिश्र जी का भी। पंडित जी, आज राग रागेश्री की बारी है।
2: अच्छा,
1: रागेश्री की चर्चा, इस राग के बारे में क्या हमें बताएंगे आप, इसका आरोह अवरोह और इसकी खूबसूरती?
2: जी, रागेश्री एक बहुत मधुर प्रकृति का राग है और बड़े रागों में भी इसकी गणना होती है, छोटे रागों में भी। छोटे रागों से मतलब लाइट अंग भी इसका बहुत अच्छा है।
1: जी जी,
2: जो सुगम संगीत में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। इसके फिल्मों में भी कई गाने बने इस राग पे।
1: जी,
2: क्लासिकल म्यूजिक में राग रागेश्री के लिए मैं आपको इसके आरोह अवरोह बजा के स्पष्ट करता हूँ, फिर एक छोटी सी रचना रूपक में सुनाता हूँ।

इसमें गंधार शुद्ध, मध्यम शुद्ध, पंचम बहुत अल्प, फिर धैवत शुद्ध, निखात कोमल और फिर सात आर सप्तक का, ये आरोह हुआ इसका। अवरोह ऐसा है, तार सप्तक का सा, फिर कोमल निषाद, फिर धैवत शुद्ध, फिर अल्प पंचम लगता है कभी कभी, ज्यादा नहीं लगता, प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत बहुत कम, और मध्यम प्रोमिनेंट है, शुद्ध मध्यम और ऋखव। और इसका जो मूल चलन है इसमें

0: क्या बात है पंडित जी, इस सुंदर सी बंदिश को सुनने के रागेश्री राग पर आधारित गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जो मन्नदा की आवाज में है।
1: अरे बहुत सुंदर गीत है वो
0: जी। फिल्म का नाम है देख कबीरा रोया।
1: जी जी, कौन आया
0: मेरे मन के
1: मन के।
0: आइए सुनते हैं।

0: देख कबीरा रोया। इस फिल्म से रागेश्वरी राग पर आधारित आप सुन रहे थे श्रोताओं मन्ना डे की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन का संगीत। इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं समाप्त हो रही है। श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आपसे कल फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की नौ कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और स्टेशन ही सब ऐसी थी।
2: अभी आप आकाशवाणी मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

0: नमस्कार।
1: स्वागत है आप सभी का हमारे प्रातःकालीन दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम में, जिसका नाम है नमस्कार झालावाड़। और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त मोहम्मद साजिद। मित्रों, आज 26 जून है, राजऋषि छत्रपति शाहू महाराज की जयंती। तो जैसा कि आप जानते हैं साथियों, को प्रतिदिन इस कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं सुविचार के साथ, तो क्यों ना आज राजऋषि छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के पावन अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं के प्रेरणादायक सुविचार के साथ की जाए। मित्रों, छत्रपति शाहू महाराज का महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक सुविचार है कि विरासत पिता से नहीं मिलती, बल्कि क्षमताओं और कर्मों से अर्जित करनी पड़ती है। यानी कि व्यक्ति को जन्म आधारित अहंकार को त्याग कर कर्मों से नाम कमाना चाहिए। और विरासत केवल व्यक्तिगत नहीं होती दोस्तों, सामूहिक कल्याण के लिए इसे होना चाहिए। आज के युग में यह सुविचार कितना प्रासंगिक है। कई लोग सोचते हैं कि पिता की संपत्ति, पदवी या नाम ही सब कुछ होता है, लेकिन महाराज कहते हैं कि नहीं, सच्ची विरासत वो है जो आप अपनी मेहनत, ज्ञान, साहस और न्यायप्रियता से कमाते हैं। वे खुद दत्तक पुत्र थे, राजगादी उन्हें विरासत में नहीं मिलती बल्कि उन्हें चुनकर लाया गया था। महाराज ने खुद को राज ऋषि बनाया, राजा और ऋषि दोनों। उन्होंने राज से नहीं बल्कि प्रजा की सेवा को अपना धर्म बनाया।

अद्वितीय योगदान था। उन्होंने सहकारी समितियों, कपड़ा मिलें, कृषि संस्थान स्थापित किए, राधा नगरी बांध जैसा बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किया जिससे हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई। वो कहते थे दोस्तों कि मैं यहाँ राजा के रूप में नहीं बल्कि उन दुखियों का मित्र बनकर आया हूँ जिनकी दशा पत्थर दिल को भी दे। लेकिन अफसोस मित्रों कि 1922 को मात्र 47 साल की उम्र में आपका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। महाराष्ट्र सरकार 26 जून को उनकी जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस के रूप में भी मनाती है।

आज 26 जून है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1987 से मनाया जाने वाला यह दिन हमें याद दिलाता है दोस्तों कि नशा न सिर्फ व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार, समाज और देश को बर्बाद कर देता है। दुनिया भर में हर साल लाखों लोग नशीली दवाओं की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के अनुसार लगभग 3.5 करोड़ लोग गंभीर रूप से नशे की लत का शिकार हैं। भारत में भी युवा पीढ़ी इसकी सबसे बड़ी शिकार है। हीरोइन, कोकीन, चरक, इसमें एक LSD, MD, कई ड्रग्स हैं दोस्तों, न सिर्फ जो कि हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ती बल्कि मानसिक विकार, HIV, एड्स जैसी बीमारियों और अपराध भी बढ़ाती हैं। अवैध तस्करी का जाल इस समय पूरे देश में फैला हुआ है। सीमाओं पर तस्कर माफिया सक्रिय हैं। आए दिन ऐसे समाचार हमें सुनने को मिलते पड़ते हैं और ये माफिया युवाओं को निशाना बनाते हैं स्कूल, कॉलेज के आसपास, पार्टियों में, सोशल मीडिया के जरिए। दोस्तों, अगर एक बार लत लग गई ना तो व्यक्ति चोरी, डकैती, यहाँ तक कि हत्या जैसे अपराधों तक उतर जाता है। परिवार टूट जाते हैं, माता पिता का सपना चूर चूर हो जाता है। ऐसी हजारों कहानियां हमारे आसपास हैं। गौरतलब है साथियों कि नशे की लत दिमाग की बीमारी है। दवाओं, काउंसलिंग और परिवार के सहयोग से 70-80% तक लोग पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान नशा मुक्त भारत और ड्रग फ्री को हम सफल बनाकर नशा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम किए जाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, योग और सांस्कृतिक गतिविधियां भी युवाओं को नशे से दूर रख सकती हैं। तो अपने बच्चों और युवाओं से खुद बने संदिग्ध गतिविधियों

उपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इसी क्रम में आज हमारे केंद्र से 8:15 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत का प्रसारण किया जाएगा, जिसका कि विषय होगा नशाखोरी के शिकार लोगों का उपचार एवं सुधार, और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रश्मि गुप्ता। तो फोन नंबर 2325-93-7432 याद रखिएगा और इस कार्यक्रम में फोन जरूर कीजिएगा। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और विशेष दिवस के क्रम में ही अगर आपको जानकारी दे तो हर साल आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र का यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यातना का पूर्ण उन्मूलन और पीड़ितों को समर्थन, पुनर्वास और न्याय दिलाना है। यातना की परिभाषा में शारीरिक या मानसिक गंभीर पीड़ा शामिल है दोस्तों, जो कि जानबूझकर किसी से जानकारी, कबूलनामा, सजा या भय पैदा करने के लिए दी जाती है। ये सार्वजनिक अधिकारी या उनकी सहमति से होती है। संयुक्त राष्ट्र से मानवता के विरुद्ध सबसे घृणित अपराध मानता है। आज 174 से ज्यादा देश इस कन्वेक्शन के पक्षकार हैं। इस दिन संयुक्त राष्ट्र देश, नागरिक समाज और व्यक्तियों से अपील की जाती है कि वो यातना से सैकड़ों हजारों पीड़ितों के समर्थन में एकजुट हो जाएं। यूएन वॉलंटरी एंड फॉर विक्टिम ऑफ टॉर्चर पीड़ितों के पुनर्वास, चिकित्सा, कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक मदद के लिए 600 से ज्यादा संगठनों को फंडिंग देता है, जो हर साल 50,000 से अधिक पीड़ितों तक पहुंचता है। यह दिवस यातना रोकने, दोषियों को सजा दिलाने और पीड़ितों की गरिमा तक अधिकारों की रक्षा का संदेश देता है।

और अब नमस्कार झालावाड़ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मुस्लिम समुदाय द्वारा आज मनाए जा रहे मुहर्रम पर्व की। आपको बता दें दोस्तों कि यह शोक और गम का पर्व होता है। यह वो दिन है जब सत्य और अन्याय के बीच हुए महान संघर्ष की याद की जाती है। दसवीं मुहर्रम आशूरा, इमाम हुसैन इब्न अली की शहादत का दिन। प्रिय श्रोताओं, करबला का मैदान आज भी पूरी दुनिया को एक अमर संदेश दे रहा है। 680 ईस्वी में यजीद की सत्ता के खिलाफ इमाम हुसैन ने जिस साहस और बलिदान का परिचय दिया था वो मानवता के इतिहास में एक अनुपम उदाहरण है। मुहर्रम सिर्फ शोक का पर्व नहीं है बल्कि सत्य, न्याय और मानवीय गरिमा की रक्षा का संकल्प है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 साथियों के साथ मिलकर यजीद की ज्यादती के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था, मैं अपने परिवार और बच्चों की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि मानवता को जागृत करने के लिए निकला हूं। उनकी शहादत ने साबित कर दिया कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब में बलिदान या शहादत देना जरूरी हो जाता है। और आज जब दुनिया में कहीं अन्याय, दमन और असहिष्णुता बढ़ रही है, तब इमाम हुसैन का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है कि सत्य के लिए खड़े हो जाओ, भले ही तुम अकेले क्यों न हो जाओ। अन्याय के सामने झुकने से बेहतर है कि मौत को गले लगा लो, और इंसानियत की रक्षा के लिए बलिदान सबसे बड़ा जिहाद है। इमाम हुसैन की शहादत हमें याद दिलाती है दोस्तों कि जीवन की असली कीमत सुख सुविधा में नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलने में है। आज भी लाखों करोड़ों लोग हर साल आशूरा पर करबला की याद में जुलूस निकालते हैं, मातम करते हैं, मुहर्रम निकालते हैं, लेकिन असली मातम वह होता है जो दिल में जागृति पैदा कर दे। आइए आज हम सब मिलकर इमाम हुसैन के संदेश को अपनाएं, अपने घरों में, समाज में और देश में सत्य, प्रेम और न्याय का दीप जलाएं। मुहर्रम का यह पर्व हमें एकजुट होने, सहनशीलता बढ़ाने और मानवता की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आइए हम इमाम हुसैन इब्न अली की शहादत को सलाम करते हैं।

का संदेश है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में असमानता को और बढ़ाता है। कोई व्यक्ति कितना प्रभावित होगा यह उसकी आय, लिंग, उम्र, शिक्षा और सेहत पर निर्भर करता है। अमीर देश और अमीर लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित रख पाते हैं, जबकि गरीब लोग जो सबसे कम प्रदूषण करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। देशों के अंदर भी सामाजिक आवास, स्वास्थ्य सेवा और आपदा योजना जैसे कदम जरूरतमंदों की रक्षा करते हैं। दुनिया में असमानता को बढ़ाने से रोकने के लिए उचित धन सहायता और संसाधनों का सही बंटवारा बहुत मायने रखता है। यहाँ एक रोचक जानकारी है। दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के पास दुनिया की 43% संपत्ति है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

50% तक कम हो जाता है, खासकर 50 से ज्यादा उम्र के लोगों और महिलाओं के लिए वरदान है। योग गुरु और चिकित्सकों की निगरानी में कुछ बेहतरीन आसनों से आप अपना शारीरिक यानी शारीरिक संतुलन बरकरार रख सकते हैं, जैसे कि मार्जरीसन, बितिलासन, वृक्षासन, वीरभद्रासन, उत्तानासन। और हर आसन में ध्यान रखने वाली बात है कि गहरी और धीमी सांस भी लेना चाहिए, और प्राणायाम, भ्रामरी और अनुलोम विलोम भी संतुलन और एकाग्रता दोनों बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ 15 से 20 मिनट योग के लिए समय निकालिए, यह आपको संतुलित और फिट बनाए रख सकता है। शर्त है कि इसे आप अपनाएं, चाहे आप युवा हों, बुजुर्ग हों, महिला हों या पुरुष हों, योग सारी सीमाओं को तोड़ देता है। तो आज से ही शुरू कीजिए, यह जीवन जीने का तरीका है। गतिशील रहिए, संतुलित रहिए और स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: 8:15 पर आज का विषय होगा नशाखोरी के शिकार लोगों का उपचार एवं सुधार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रश्मि गुप्ता, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी SRG अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज झालावाड़, जिला नोडल अधिकारी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम झालावाड़। तो नशे से संबंधित कोई भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो 8:15 पर आपकी सेहत सजीव फोन कार्यक्रम में फोन जरूर कीजिएगा। फोन नंबर वही 2325 और झालावाड़ के स्टडी कोड 07432। शाम 5 बजे युवा जगत के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, छत्रपति शाहू महाराज की जयंती, यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भी बातचीत होगी और प्रेरणा परिहार के अंतिमा कुमारी से बातचीत होगा। शीर्षक होगा चिराग जल रहे हैं और करंट अफेयर्स और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में भी इस कार्यक्रम में युवा साथी जानेंगे। किसान साथियों के लिए कृषक चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 7 बजे। चर्चा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज ऋषि छत्रपति शाहू महाराज की जयंती पर भी बातचीत होगी। मुहर्रम की जानकारी होगी और सोयाबीन की उन्नत खेती विषय पर डॉक्टर शंकर लाल यादव कृषि अनुसंधान केंद्र खानपुर से बातचीत किसान साथियों को सुनवाई जाएगी। और रात 9 बजे आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं गीत संगीत की विभिन्न विधाओं का कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले स्थानीय और मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: और अब कार्यक्रम में बहुत ही कम समय शेष बचाए मित्रों, तो चलते चलते आपको जानकारी दे दें कि झालावाड़ में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने के उद्देश्य से वन विभाग ने एक नई पहल की है। जिले की नर्सरियों को अब हाईटेक बना दिया गया है। इसमें आमजन घर बैठे ही अपनी पसंद के पौधों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उनकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर पाएंगे। इसके लिए प्रत्येक नर्सरी के बाहर विशेष QR कोड लगाए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले की 8 वन रेंजों में कुल 19 नर्सरियां स्थापित की गई हैं। इन नर्सरियों में इस साल लगभग 12,20,000 पौधे तैयार कर लिए गए हैं। इनमें छायादार, फलदार, फूलदार और सजावटी प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पौधारोपण के लिए प्रेरित हों और पौधों की उपलब्धता को पारदर्शी और सुगम इसके जरिए बना दिया जाए। ऑनलाइन सुविधा के लिए पोर्टल 5 जून से खोल दिया गया है और विभाग के FMDSS पोर्टल पर भी पौधों से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध है। और इस जानकारी के साथ ही मित्रों, हमारा आज का ये दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम अब यहीं तक। अपने दोस्त मोहम्मद साजिद को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। नमस्कार, नमस्कार झालावाड़।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

शुरुआती गीत में यह आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म अभिनेत्री, गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

शुरुआती गीत में यह आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म अभिनेत्री, गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जी हाँ दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर में मैं हूँ फिल्म का गीत। गीत का बोल लिखे हैं मजरूह ने और संगीत है

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम अभी जारी है, यहां लेंगे एक ब्रेक। अगले गीत के साथ जल्द हाजिर होंगे।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: स्वयं ही कट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओ, जैसे UPI से।
3: अच्छा।
2: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
3: आम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
5: ब्रेक के बाद फिल्म संगीत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत, गोपी फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है कल्याण जानन जी का और आवाज लता मंगेशकर की।

0: लता मंगेशकर की आवाज में भी आप गोपी फिल्म का गीत सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। 8 बजने को हैं, तो समाचार प्रभात का आज का अंक हम दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार।

पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने

0: की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने
1: कहा, मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
6: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
7: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के

0: लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
2: जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा

0: चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है।
0: के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति।

0: ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट
1: चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3,000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है।
3: यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, FM 103.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य विषयक सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत।

0: के और यूज करने लगते हैं। तो इस तरह से शुरुआत होती है। जो जनरल चीजें हमारे बीच में, स्मोकिंग हुई, हमारे बीच में टोबैको हुआ, एल्कोहल हुआ, आगे बढ़ते हैं तो कैनबिस हुआ, तो ये शुरुआती नशे के पदार्थ हैं। पर अगर कैनबिस को गेटवे सब्सटेंस बोला जाता है इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग वाले केस में, जो इलिसिट ड्रग्स हैं, मतलब जो अवैधानिक
1: जाने में लोग नशे का शिकार हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, जो सीखते हैं और मीडिया इसमें बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि आजकल हम इस बहुत इम्प्रेस हैं कि लोग क्या हैं और वो उसे बहुत करते हैं।
1: जी जी।
0: तो ये जो भ्रामक हैं हमारे कमजोर और नाजुक दिमाग पे बहुत गहरा असर छोड़ते हैं और एक शुरुआती कारण बनते हैं।
1: और खास तौर से युवा ही इसका शिकार क्यों होते हैं?
0: ये अगर कहा है कि ये स्ट्रेटेजिक युवा लेने की, कहा जाता है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो किसी हमले की या किसी टेररिज्म की जरूरत नहीं है, युवा वर्ग को आप नशे की लत डाल दो। अगर कोई एजेड होगा तो वो थोड़े टाइम में चीजें खत्म हो जाएंगी, पर अगर वही चीज युवा में है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये एक षड्यंत्रकारी प्रक्रिया है कि हमारे युवा वर्ग जो है उसको नशे की गिरफ्त में लिया जा रहा है।
1: और हम देखते हैं कि जब कोई एक व्यक्ति नशा करना स्टार्ट करता है, मान लीजिए कोई युवा है, तो वो अपने सर्किल में अपने यार दोस्तों को उनको भी ऑफर करता है और धीरे धीरे वो नशे की एक चेन बनती चली जाती है और समाज का बहुत बड़ा हिस्सा नशे की गिरफ्त में आ जाता है।
0: एक्चुअली पीयर प्रेशर काफी योगदान करता है इस चीज में, क्योंकि जो एडोलेसेंट एज होती है वो एक दूसरे को इम्प्रेस करने और इम्प्रेस होने में बहुत जल्दी बहुत सेंसिटिव होती है। और आपने देखा होगा दोस्त एक जना नहीं ले रहा है तो उसे बुली करेंगे, अरे देखो ये ऐसा वैसा, तो वो प्रेशर में जल्दी आ जाते हैं। उनका जो विवेक है वो इतना जागरूक नहीं होता है, उन्हें ना कहना नहीं आता है, तो वो उस प्रेशर में एक बार स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उसमें फंसते चले जाते हैं।
1: और डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बातचीत की शुरुआत में कहा था कि हमारे आसपास हमारे बड़े बूढ़े नशा करते हैं, तंबाकू का आपने जिक्र किया, बीड़ी का, धूम्रपान का आपने जिक्र किया, तो हमने भी देखा है कि समाज में कई ऐसी परंपराएं भी हैं कि कोई मेहमान जाता है तो उसको भी ये चीज़ें ऑफर की जाती हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत सारी कुरूतियाँ हैं। पुराने जमाने में एक हुक्के का प्रचलन था, बुजुर्गों की सभा होती थी तो उसमें मान सम्मान हुक्के से करता था, शादी ब्याह में ये प्रचलन था, अफीम का जो हमल का एक चलन होता था, अपन त्योहार होता है कि हाँ भांग और इनका नशा ऑफर किया जाता है, तो कुछ कुछ ऐसी ऑफरिंग्स हैं, कुरूतियां हैं जो इंसान को जनरलाइज्ड करती है, उन्हें लगता है कि जब हम इस तरह से यूज ले सकते हैं तो इसमें बुराई क्या है।
1: तो जो नशे की शुरुआती गिरफ्त में आते हैं वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, वो शायद ये समझते हैं कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, कि कोई जाता है तो उसको ये नशा ऑफर किया जाता है। अमल की जिक्र आपने किया, हुक्के का जिक्र आपने किया, तो ये हमारे समाज में पीढ़ियों से चली आ रही

0: आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, यानी जागरूकता का बहुत बड़ा कार्यक्रम आज पूरे देश भर में, पूरे विश्व में आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें आप भी अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है नशे को लेकर, नशा छोड़ने को लेकर, आपके परिवार में कोई नशे से पीड़ित है, तो आप कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो डॉक्टर रश्मि गुप्ता हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 232593 और झारावाड़ के सिटी कोड 07432। हमें आपके कॉल का इंतजार है और डॉक्टर रश्मि गुप्ता कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आमतौर पर हम देखते हैं कि युवाओं के हाथों में सिगरेट होती है, तो सबसे पहले ये सिगरेट से स्टार्ट क्यों किया जाता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं गांजा तक या और दूसरी चीजों तक जाते हैं, तो ये स्मोकिंग जो सिगरेट के द्वारा की जाती है।
1: एक्चुअली ये डिपेंड करता है सब्सटेंस पे। मैंने बताया जैसे कि नशा है ही वो पदार्थ जो कि आपके माइंड में इतना डोपामिन सिक्रेट करेगा कि आप उसको उसकी क्रेविंग होगी, और अगर आप नहीं लेते हैं तो विड्रॉल होगा। तो जो सिगरेट है उसमें वैसे तो 200 से ज्यादा अधिक तत्व हैं जो नुकसान करते हैं, पर मेन जो नशे के लिए प्रेरित करने वाला तत्व है वो है निकोटीन, और उसका जो एडिक्शन है वो एक मिनट में हो जाता है, एक सेकंड में, एक कश में हो जाता है। इंसान अगर एक कश लेता है, इवन पैसिव स्मोकिंग जो इंसान अपने साथ वालों को कश लेके उसे इनहेल करता है, उसे भी निकोटिन अंदर जाता है और क्रेविंग होती है। तो इसलिए ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और बहुत व्यापक पैमाने पे दिखाई देता है, और साथ में जिस तरह से ग्लैमराइज किया जाता है मीडिया के माध्यम से, इसकी उपलब्धि इतनी कॉमनली है, इसका जो वैल्यू है, अपन मनी वैल्यू की बात करें बहुत महंगा नशा नहीं है, इजीली अवेलेबल है, तो टीन एज में ये काफी कॉमन है।
0: और अक्सर हम देखते भी हैं कि कई लोगों को जब सिगरेट के धुआं जब वातावरण में फैलता है तो कई लोगों को तो उससे परेशानी में होती है, और कई लोग अट्रैक्टिव होते हैं कि भाई ये सिगरेट की खुशबू कहाँ से आ रही है।
1: एक्चुअली थोड़ा सा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी है। निकोटिन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो भूख को मारता है और हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कुछ समय के लिए बढ़ाता है
0: जी।
1: तो एकदम इंसान को इस तरह का इफेक्ट आता है तो उसे लगता है उसकी टेंशन रिलीज हो गई, और स्पेशली जो वर्किंग क्लास है, हमारी मेड्स हुई, हमारे और इस तरह के जिन्हें ध्यान करना होता है, उनको लगता है कि हाँ इससे हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ रही है। ड्रग्स जो हुए उन्हें लगता है कि आप बिना खाए पिए और आप बहुत पा रहे हो, तो इस वजह से उनको एक दिमाग में बहुत मजबूत

0: कि एक तो वो बीच बीच में गायब हो रहा है,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी जी
0: क्रेविंग इतनी खतरनाक होती है कि इंसान रोक नहीं पाता, कितना भी जरूरी काम हो वो बीच में से गायब हो जाता है,
1: जी जी जी।
0: बीच बीच में गायब हो रहा है और उसका गुस्सा बढ़ रहा है, तो वो पहला लक्षण है कि आप पहचानिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर हम इससे हैं, तो हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे बच्चे हैं, स्कूल के ग्रेड्स कम हो रही है, पीयर ग्रुप में ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं टाइम, और वो उसे हाइड कर रहे हैं, वो लोगों को हम बताएं या इस तरह का पेरेंट्स को इस तरह की बात पता चले या टीचर्स को इस तरह का एक्सपोजर हो, पर उनका जो स्कूल ग्रेड्स में चेंज है, उनके जो ऑक्यूपेशनल वो है उसमें कमी आ रही है, तो इससे हमें साफ चीजें पता चलती हैं। इवन आपने देखा होगा शादियों में लोग बाग बीच बीच में गायब हो जाते हैं, इवन अपनी शादी में दूल्हा
1: क्योंकि उसे तो लत है ना, तो उसकी लत की पूर्ति उस समय पर होना बहुत जरूरी होता
0: है। ये सबसे बड़ी विशेष की पॉइंट है कि अगर इंसान जहां पे उसे उपस्थित होना चाहिए और वहां पे भी वो गायब हो रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
1: तो जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, डॉक्टर रश्मि गुप्ता की बात को ध्यान से नोट करें कि अगर अपने परिवार में कोई ऐसा युवा है या कोई व्यक्ति है जो इस तरीके की हरकतें करता हुआ आपको नजर आता है, तो उसको नोट जरूर करें ताकि आप उसे समझा सकें। और जब समझाने की बात आती है डॉक्टर, तो एक नशेड़ी व्यक्ति को हम कैसे समझाइश कर सकते हैं, क्योंकि उसके समझ में वो बातें नहीं आ पाती।
0: सर ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर हम किसी भी पूछते हैं कि क्या वो नशा करता है, तो सबसे पहले वो स्वीकार उसको नशा मुक्त करने के लिए, और वो ही सबसे मुश्किल कार्य है, क्योंकि इंसान या तो हाँ नहीं करेगा, अगर रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो भी वो कहेगा कि मैं तो ओकेजनल करता हूँ, आज कर लिया, इससे पहले नहीं किया, इसके आगे नहीं करूंगा, क्योंकि उसको खुद को पता है कि वो गलत राह पे चल चुका है, पर फिर भी वो अपने आप से झूठ बोलता है, औरों से झूठ बोलता है। तो हमें ये जरूरी नहीं है कि उसे कन्फ्रंट करें, उसे डीमोरलाइज करें, उसे डिग्रेड करें, हमें ये जरूरी है कि उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है उसको हम बताएं, क्योंकि अगर वो नशा कर रहा है कहीं ना कहीं उसकी ग्रेडिंग्स गिर रही है, हम उसे बता सकते हैं क्या बात है, आजकल क्या परेशानी है, ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही है, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, आजकल तुम गुस्सेल ज्यादा हो रहे हो, आजकल तुम अवॉइड ज्यादा कर रहे हो चीजों को, या तुम पहले जितना डिसिप्लिन थे उतना डिसिप्लिन नहीं हो, या फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। हमें जो कहते हैं ना, हमें नशे से, हमें इंसान से नहीं लड़ना है, हमें उसकी बुराई से लड़ना है।
1: जी जी
0: तो
1: जी।
0: हमें उसे ये नहीं कहना है कि तुम बुरे हो, हमें उसे ये समझाना है कि तुम बहुत अच्छे हो, पर ऐसी क्या बुरी चीज है जिसकी वजह से तुम में ये बुराइयां आती जा रही
1: हैं। जी जी जी। तो मेन तो उस जो मेन बुराई

0: में ड्रैग कर गया, क्योंकि उसमें इतनी सारी भ्रामक चीजें आती हैं, पॉप आउट होती रहती हैं, बच्चा स्क्रॉल करता रहता है, उसे पता नहीं चलता। तो आप अगर दे भी रहे हैं तो आप स्क्रीन टाइम नोट कीजिए, आप फीडबैक लीजिए, क्या चीज देख रहा है, कितने टाइम तक दे रहा है। आप मोबाइल देने से पहले उसका गोल पूछिए कि आपको किस लिए चाहिए। पहले से अपनी जो जो उसके दिमाग में क्वेरीज है उसे कहो कि नोट डाउन करे, और फिर वो मोबाइल ले, टाइम लिमिटेड टाइम में ले, और फिर उसका फीडबैक लीजिए कि आपने जिस गोल से लिया था उसमें आप कितना अचीव कर पाए, आपने क्या देखा, आपको क्या मिला, और उसे प्रोपोगेट कीजिए। एक चीज आप केवल अकेले नहीं देखिए, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। तो मोबाइल में, उसमें इंटरनेट पे बहुत अच्छी चीजें भी हैं, अच्छी जानकारी भी है, पर परेशानी ये होती है कि बुरी चीजें इंसान को जल्दी खींच लेती हैं और अच्छी चीजों में ध्यान लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें ये सिखाने की जरूरत पड़ेगी कि आपको अच्छी चीजों को फोकस रखना है और बुरी चीजों को अवॉइड करना है।
1: लेकिन एक बच्चे को समझाना बहुत टेढ़ी खीर होती है, लेकिन हमारे सुनने वाले आपकी इस बात को ज़रूर फॉलो करेंगे। और अब आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर रश्मि, कि नशे की जो लत होती है वो बीमारी की अवस्था में कब पहुंच जाती है?
0: देखिए, नशा शुरू शुरू में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, एक्सकर्शन के लिए किया जाता है, पर धीरे धीरे उसके इतनी ज़्यादा मात्रा बढ़ने लगती है कि वो अगर ना मिले तो हमें विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, और धीरे धीरे उसकी जो यूज़ है वो बढ़ता जाता है। तो जब कभी भी ये यूज़ आवश्यकता से अधिक हो गया और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट हमें दिख रहे हैं, हमारे साथ वालों को दिख रहे हैं, तो वो एक बीमारी का रूप ले चुके हैं। कहीं ना कहीं हम कंट्रोलिंग पावर खत्म कर चुके हैं। तो हमें उसी समय सतर्क हो जाना चाहिए। अगर हमें मोबाइल छीनने पे गुस्सा चिड़चिड़ापन आ रहा है, अगर हमें मोबाइल ना मिलने पे बेचैनी एंजाइटी हो रही है, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि ये की सिम्टम्स हैं, हमें एक ब्रेक लेना है, हमें उसे छोड़ना है। इसी तरह से जो भी सब्सटेंस है, डिपेंड करता है किस तरह का पदार्थ है, उसके विड्रॉल सिम्टम्स फिजिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। तो अगर किसी भी तरह का व्यवहार का चेंज हमें

0: ये नहीं पता कि हम दिमाग को सुन कर रहे हैं और वो कितनी देर सुन रहेगा।
1: जी, जी.
0: जब वो चेतना में आएगा तो उस एहसास को डबल महसूस करेगा। तो हमारे जो तनाव चिंताएं वो खत्म नहीं हो रहे हैं बल्कि वो डबल हो रहे हैं। प्लस ये जो दवाइयां हैं वो मानसिक बीमारियों को प्रेसिपिटेट भी करती हैं।
1: जी जी डॉक्टर रश्मि, अपनी बात को हम आगे जारी रखेंगे। यहाँ एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं।
0: जी जी
1: नमस्कार, कार्यक्रम है आपकी सेहत। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से कॉल किया आपने?
2: रायपुर से बोल रहा हूँ।
1: नाम बताइए अपना।
2: रुड़ूलाल नाम मेरा।
1: हाँ रुड़ूलाल जी, क्या पूछना चाहते हैं?
2: ये पूछना चाहते हैं सर जी, ये जो है ना नशे के जो जहाँ उत्पादन होता है वहीं से रोक दिया जाए, कोई कंपनी बना रही है वहीं से रोक दिया जाए, तो फिर कहाँ से आएगा?
1: देखिए आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और डॉक्टर रश्मि इसका जवाब दें, उससे पहले एक जवाब हमारे पास भी इसका है कि पुलिस अपने प्रयास कर रही है और पिछले दिनों आपने देखा कि किस प्रकार से झालावाड़ में मादक पदार्थों के खिलाफ अवैध तस्करी पर कितना नियंत्रण का प्रयास किए गए।
2: सर जी पुलिस वाले है ना यही पैसे ले दे के ही ये इस काम को चलाते हैं, लेकिन जहाँ कंपनियां हो रही है जहाँ ये उत्पादन हो रहा है उसी को रोक दिया जाए ना, जड़ से खत्म कर दिया जाए, नशा अपने आप बंद हो जाए।
1: आपका सवाल बिल्कुल सही है और देखिए पुलिस और प्रशासन सभी प्रयास करते हैं लेकिन असामाजिक तत्व हर जगह मौजूद होते हैं, तो उन्हीं की रोकथाम के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत बिल्कुल नशा मुक्त समाज बन पाएगा। और डॉक्टर रश्मि भी इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगी?
0: रोटूलाल जी, हम ये तो आपने सुना होगा एक मछली पूरे उस तालाब को गंदा कर देती है, पर क्या आपने ये सुना है कि एक मछली को देख के हम सब गंदे हो जाएं? हम अपना मॉरल बूस्ट क्यों नहीं करते हैं? कोई चीज़ हमारे सामने भी है, अगर कितनी भी बुरी है कितनी भी गंदी है, अगर हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो बेकार हो जानी है। जो मार्केट है वो डिमांड एंड सप्लाई की स्ट्रेटेजी पे चलता है, अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई करके क्या करेंगे, बल्कि वो करोड़ों लोग जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनका इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा। तो हम दूसरों की तरफ देखने की बजाय खुद को देखें, अपने परिवार को मोटिवेट रखें, अपने से रिलेटेड लोगों को खुद को मोटिवेट रखें कि हमें उन्हें पनपने ही नहीं देना है। हमने सुना होगा ना मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, तो चाहने दीजिए, करने वालों को करने दीजिए, हम अपना मॉरल बूस्टअप रखें और किसी को हमारे अपने परिवार को खराब ना होने दें।
1: यानी जो लोग जहर बेच रहे हैं अगर हम जहर का सेवन ही नहीं करेंगे तो उनको मार्केट ही उपलब्ध नहीं होगा, जब मार्केट उपलब्ध नहीं होगा तो उनका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। रुड़ूलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और डॉक्टर रश्मि अपनी बातचीत पर हम वापस आते हैं कि नशे के नुकसान की हम बात कर रहे थे।
0: जी बिल्कुल, हम बात कर रहे थे कि मानसिक बीमारियां जो होती हैं वो भी कई बार कारण होती हैं नशा लेने का। हम सोचते हैं कि जैसे हम तनाव में हैं तो हमें लगता है कि हम कोई नशा ले लेंगे तो हमारा वो तनाव दूर हो जाएगा, जबकि वो थोड़े टाइम के लिए होता है। तो पर इस तरह से हम लोग प्रेरित होते हैं, हम अपनी बीमारियों को पहचानते नहीं हैं। बच्चे जो होते हैं वो उत्तेजना के भाई हमें अच्छा दिखना है, हमें लोगों को इम्प्रेस करना है, तो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन हुआ, बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ। अगर इंसान तेजी में जाता है तो उसे लगता है कि ये सब चीज़ें मेरे लिए बनी है और एक बार लेने से क्या हो जाएगा, मुझे ट्राई तो करके देखना चाहिए। तो शुरू होता है कि मानसिक बीमारियां हैं जिनको हम नहीं पहचानते हैं और उसकी वजह से इंसान नशे की गिरफ्त में फंस जाता है। तो अगर हम मानसिक बीमारियों के लक्षण को जानेंगे पहचानेंगे तो भी हम ये नशे की प्रवृत्ति को रोकथाम कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर रश्मि, और नशा की जो एक दिमागी बीमारी माना जाता है तो दिमाग पर इससे सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है और क्या लंबे समय तक ये नुकसान बना रहता है?
0: जी बिल्कुल, एक बार माइंड में अगर वो सर्किट बन गए तो उन्हें हम फेड करने के लिए निरंतर कोशिश करें तब भी वो कहीं ना कहीं रहते हैं। अगर हमारे यंग माइंड में एक बार ये इम्प्रेशन हो गया कि हम ड्रिंक करेंगे तो हमारा तनाव खत्म हो जाएगा या हम स्मोक करेंगे तो हमारा तनाव खत्म हो जाएगा,
1: जी, जी, जी।
0: तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो 20 साल 25 साल सोबर रहने के बाद वक्त की किसी परिस्थिति की वजह से, किसी का डिवोर्स हो गया, जॉब चली गई, घर में किसी की डेथ हो गई या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद में वो ब्रेकडाउन हो गए और वो नशे की गिरफ्त में फंस गए।
1: तो श्रोताओं, जैसा कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से इस समय कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है आपकी सेहत, जिसका विषय है नशाखोरी के शिकार लोगों का उपचार और सुधार। डॉक्टर रश्मि गुप्ता वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एसआरजी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज झालावाड़ हमारे साथ हैं, आप नोडल अधिकारी हैं मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम झालावाड़ की। तो नशाखोरी के लिए या नशा करने वाले लोगों को बचाव के लिए, उपचार के लिए या उनमें सुधार के लिए कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर 232593 और झालावाड़ के स्टेट कोड 07432। आपको बता दें कि आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है।

0: और इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि नशाखोरों के खिलाफ जागरूकता पैदा की जाए और समाज से नशा बिल्कुल तरह से मुक्त कर दिया जाए। और डॉक्टर रश्मि गुप्ता, बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और अब आपसे कोई आपकी पसंद का गीत जो हमारे श्रोताओं को आप सुनवाना चाहें।
1: सर, नशे के ऊपर एक गीत है, दिल टूटे टूटे हो गया। बहुत ही सुंदर वर्डिंग्स हैं उसके, मुझे लगता है कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको सुनवाना चाहिए।
0: इसमें एक लाइन है, ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो, मुश्किल से मिलता है जीवन, क्या तुमको नहीं पता, दिल टूटे टूटे हो गया।
1: जी जी
0: सुनवा।

कर लो तोबा सो सो बार, कहते फिरोगे वरना यार दिल टूटे टूटे हो गया। बहुत ही सुंदर से बोल डॉक्टर रश्मि गुप्ता, आपने इस गीत को चुना क्योंकि इस गीत में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। तो हमारे सुनने वालों को हमारा यही संदेश है कि नशे से बिल्कुल बचें, और अगर करना है तो अपने समाज से प्यार करो, अपने वातावरण से प्यार करो।

0: तो वो हमारे जो ये गुस्सा चिड़चिड़ापन, तनाव का एक लक्षण चिड़चिड़ापन भी होता है, और इसमें घी का करती हैं ये नशे के पदार्थ, तो है तो नशे वो बहुत गहरे घनिष्ठ संबंध है।
1: हम इस पर आएंगे, एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आपकी सेहत, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो कृपया जवाब दें।
2: हाँ सर।
1: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
2: मैं दुर्गालाल बोल रहा था सर।
1: बोलिए
2: सर। तंबाकू छोड़ने के लिए क्या उपाय है?
1: डॉक्टर साहब, तंबाकू के लिए ये पूछना चाहते हैं कि हम तंबाकू किस प्रकार से छोड़ सकते हैं।
0: दुर्गालाल जी, तंबाकू छोड़ने के लिए आप कितने मोटिवेटेड हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप कितनी शिद्दत तंबाकू छोड़ना चाहते हैं?
2: बहुत तंबाकू खाता हूँ सर मैं।
0: बिल्कुल, आप तंबाकू खाते हैं, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, पर आप क्या 100% कोशिश करना चाहते हैं तंबाकू छोड़ने की?
2: जी सर।
0: क्योंकि तंबाकू जो है वो आपके मोटिवेशन पर ही डिपेंड करता है छोड़ना। तंबाकू से जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा गहरी वाली नहीं है कि उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़े या बहुत ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़े आपको। उसके लिए आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि तंबाकू ना लेते हैं तो आपको कब्जी होती है, या आपको एसिडिटी होती है, या आपको खाना नहीं पचता है, तो वो तो जनरल दवाइयां होती हैं, उनसे ठीक हो जाता है। पर ये जो निकोटीन का एडिक्शन है, जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। जैसा हमने बात किया कि अगर सिगरेट का एक कश लेने से इंसान एडिक्टेड हो जाता है, तो वो दूसरे ही पल में डी एडिक्ट भी हो जाता है अपने आप से। तो वो पहला कश या पहला गुटके का पुड़ी आप ना लें, उसके लिए आप क्या कोशिश करेंगे?
2: सर

डॉक्टर रश्मि गुप्ता ने हमें बताया कि नशा एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। सही सहयोग और दृढ़ शक्ति से कोई भी व्यक्ति इस गुलामी से मुक्त हो सकता है। डॉक्टर रश्मि गुप्ता, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और नशा मुक्ति के नशाखोरी के शिकार लोगों को उपचार और बचाव के उपाय आपने बताए। तो श्रोताओं, याद रखें, नशा मुक्त समाज ही स्वस्थ समाज है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम नशे से दूर रहेंगे, अपने बच्चों को और अपने परिवार को, अपने समाज को नशे से बचाएंगे। अब आज का ये कार्यक्रम यहीं तक। चलते चलते आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे बीके मीणा, शास्त्री प्रस्तुति के पी मीणा की, और अब अपने दोस्त मोहम्मद साजिद को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी सेहत। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मॉनसून की पहली बारिश हुई। अगले 4 से 5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में प्रस्तावित राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए हैं। इससे भवनों में ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने इस कोड के अनुपालन मैकेनिज्म को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश में भवन निर्माण के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन दिया जा सके। मुख्य सचिव ने यह निर्देश कल शासन सचिवालय में प्रदेश में एनर्जी ट्रांजिशन पर गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। मुख्य सचिव ने सरकारी भवनों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा

वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने की 21 तारीख को आयोजित हुई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशूरा ए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य, न्याय और नेकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। प्रदेश भर में इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले जाएंगे। पाली में बांस, लकड़ी और रंग बिरंगे चमकीले कागजों तथा कपड़ों से ताजिए बनाए गए हैं। जुलूस को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। सवाईमाधोपुर में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। मातमी धुनों के साथ विभिन्न मोहल्लों से ताजिए निकाले जाएंगे। इस दौरान समाज के लोगों ने छबील लगा

गया। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, लूणकरणसर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ और जोधपुर सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में आगामी 4-5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आज से जुलाई के पहले सप्ताह तक पश्चिमी तथा पूर्वी राजस्थान में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएमई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। और प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की पहली बारिश हुई। अगले 4-5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिए शिल्पा राव की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, अमित त्रिवेदी का संगीत है।

0: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना था, शिल्पा राव की आवाज, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। यह है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

एनिमल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। गरिमा के बोल थे श्रेयस पुराणिक का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।

0: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाज़ें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज़ है, कब्बन मिर्ज़ा साहब। बुलाया, उनको सुना, आवाज़ तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।

को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कज़ू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिंथई किलंथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैयाराजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैयाराजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गवाए।

राजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे, तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया, हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है, और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्रवीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है, और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए

उठे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहां तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलैयाराजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलैयाराजा ने

1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी, जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

0: सन्नाटा।
1: जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिम्फनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल है।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

संगीतकार इलियाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।

1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी, जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

0: करते हैं, भी सुन के जाते हैं।
1: अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे श्रोता इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं। कैसा लगता है आप सबको हेलो फरमाइश कार्यक्रम?
0: अच्छा लगता है।
1: क्या अच्छा लगता है इसमें?
0: दोस्तों को, श्रोताओं को मौका मिल जाता है बातचीत करने का, और गाने अच्छे लगते हैं सुनने, बड़ी बात।
1: बिल्कुल सही कहा, बातचीत का मौका मिलता है और आपकी पसंद के गाने भी इसमें आते हैं, है ना?
0: जी।
1: तो चलिए आज आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: आज मजबूर कलम का गीत सुनना चाहता हूँ, रिम जिम बरसता जी बाहर पानी अंदर जी आग लगी है, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है।
1: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये झमाझम गीत।

0: सर सुबह 11 बजे तक, सर यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता है सर, करीब 10 बजे तक रात को।
1: क्या बात है ना, प्यार है आपको विविध भारती से कि रात को 1 बजे से कार्यक्रम सुनना शुरू कर देते हैं।
0: जी मैम, आपका सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है ना 3 बजे रात को।
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली कार्यक्रम।
1: अच्छी बात है, आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये जो काम आप करते हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
0: जी मैम, ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
1: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा।
0: जी मैम, उसमें मेहनत काम ज्यादा पड़ता है,
1: और उसमें से भी आप समय निकाल कर विविध भारती सुनते हैं और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात
0: नहीं
1: है।
0: वो तो ऐसा है कि काम चलता रहता है, विविध भारती में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन ही नहीं लगता हमारा। जो सुबह हुआ कि हम सीधा विविध भारती चालू कर देते हैं पहले।
1: अच्छी बात है,
0: सभी लोग सुनते हैं। फिर हम तो ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में करना होता है रात को, तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, जब बिजली चली जाती तो फिर ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
1: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है। बताइए सुनील जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: हेमराज जी का गाया हुआ गाना है, भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर।
1: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तुम्हें पापा कहते हैं, उसमें गाना है उसकी आवाज में, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते
1: ही। बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं आप।
0: वैसे दीदी आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमने चिट्ठियाँ भी भेजी है मन चाहे गीत में।
1: अच्छा चलिए सुने आपकी पसंद का गीत।

0: संदीप कुमार मक्कड़, पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाबर डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमिष होता
1: जी। स्वागत है आपका संदीप जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं, आपका साथ है तो अच्छा, ना हो तो
1: और भी अच्छा।
0: जी हाँ जी हाँ,
1: बताइए क्या करते हैं संदीप जी आप?
0: मेरा वैसे फोटो फ्रेम और लेमिनेशन का काम है, इसके अलावा मैं गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ।
1: अरे क्या गाते हैं और क्या लिखते हैं बताइए।
0: मैंने अपना हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ और मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूंगा।
1: गा के सुनाइए।
0: चलती ट्रेन में चलती चाय पीले पीले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पीले पीले आएगी सुस्ती मड़ेगी सुस्ती, एक प्याली पीले भाई पीले पीले, ओ सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पीले, ओ चाहे मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, गोरा हो या बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन दे भाई सुन ले लाला, आगे मेरे फौजी।

0: दे।
1: हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ और मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूंगा।
2: गा के सुनाइए।
1: चलती ट्रेन में चलती चाय पीले पीले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पीले पीले आएगी चुस्ती मड़ेगी सुस्ती, एक्ट प्याली पीले भाई पीले पीले, ओ सबे मुसाफिर दिल के अच्छे, सबे मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पीले, ओ चाहे मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, गोरा हो या बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन ले भाई सुन ले लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान में भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई, बैठो तुम भी चाय है आई, बैठो तुम भी चाय है आई। ये है मेरे गाने के
2: क्या बात है।
1: और अंतरा सुनाया।
2: अच्छा जो लिखते हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
1: सूफियाना जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा। सब सियाने मिलदे ने, सब सियाने मिलदे ने, ते कमला कोई कोई, ओ बोलण वाले मिलदे ने चुप कोई कोई, तांदा मेला मंदा मेला, तांदा मेला मंदा मेला, ते समझे कोई कोई, ओ सब सियाने मिलदे ने ते कमला कोई कोई।
2: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली मुलाकात में फिर आपसे कोई नया गीत सुनेंगे, बताइए।
1: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरी वाइफ ज्योति है उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवियों तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
2: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: परम मालिनी दीदी, स्वागत है, प्यार है, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्रीराधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका, बहुत पहले आपसे बात हुई भी है।
1: जी जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं आपका वही जाना पहचाना श्रोता हूँ।
0: अच्छा, आपका नाम है शारदा
1: जी,
0: तो आपका ये नाम किसने रखा?
1: मेरे पिताजी ने रखा है, और मैं बसंत पंचमी के आसपास माँ शारदा की कृपा से प्राप्त हुआ था माता पिता को। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ।
0: बिल्कुल, वही हमने जानना चाहा कि ये जो नाम है महिलाओं का ज्यादा होता है शारदा, पुरुषों में बहुत कम ऐसे नाम सुनाई देते हैं, तो जानने की हमारी इच्छा हुई कि शारदा नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, तो आपने बता
1: जी,
0: दिया
1: जी,
0: है।
1: जी, मेरे बहुत लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे लड़कियों जैसे, और मैं कॉलेज तक मैं यूं ही लंबे बाल रखा करता, गोरा चिट्टा रंग था मेरा और भोला सा चेहरा मासूम सा, तो बहुत से लड़के मुझे को लड़की समझ के लिए दोस्ती करते थे कि ये लड़की जरूर होगी।
0: हाँ।
1: लड़के की भेष में रहती है।
0: वाह, बहुत अच्छा लगा। देखिए एक नाम के पीछे कितनी चीजें छुपी होती हैं ना, और अब कैसा लगता है आपको, अब लोग जानते हैं कि भाई ये तो शारदा प्रसाद जी हैं, शारदा कुमारी नहीं है।
1: सब लोग जानने लगे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, और अब तो दाढ़ी मूछें सब हो गई हैं, तो लोग बाग जानते हैं।
0: क्या करते हैं शारदा जी?
1: मैं घर पर रहता हूँ और बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़ा रहता हूँ। रेडियो सुनना ही मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और जब आकाशवाणी विविध भारती में हमारा फोन लगता है, सुरीली हर दिल की धड़कन, तो बस हृदय प्रफुल्लित गदगद हो जाता है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बस ये तो महसूस करने वाली बातचीत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी महसूस करते हैं अपने श्रोताओं की दीवानगी को। बताइए।

0: दीपक आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़ा रहता हूँ। रेडियो सुनना ही मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है। और जब आकाशवाणी विविध भारती में हमारा फोन लगता है, सुरीली हर दिल की धड़कन, तो बस हृदय प्रफुल्लित तो गदगद हो जाता है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बस ये तो महसूस करने वाली बातचीत होती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी महसूस करते हैं अपने श्रोताओं की दीवानगी को। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
0: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विरासत है, कुमार सानू और चित्रा जी ने गीत गाया है, जावेद साहब ने लिखा है और अनु मल्लिक का संगीत है। गीत के बोल है, पायल चुनमुन चुनमुन झांझरे रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं
0: बोलिए, नाम बताइए।
1: नाम एम ताहिर है, यानी मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं।
0: देखिए, ऐसा है कि आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कार्यों से अच्छे हैं आप, और ईश्वर की आप पर जो है अति कृपा है, अल्लाह की है ना।
1: जी जी, सब ऊपर वाले के कर्म से सब सही है।
0: क्या करते हैं ताहिर जी आप?
1: मैडम जी, मैं एक शॉपकीपर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है।
0: अच्छा, किस विषय पर?
1: जी मैंने बाई इकोनॉमिक्स किया था।
0: तो आपने अपनी दुकान संभाल रखी है या अपने पिता की?
1: जी, पापा बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ, बस अब उन्होंने फिलहाल रेस्ट के लिए।
0: किस तरह की दुकान है
1: ये? लेडीज की है, आपसे ही मुतालिक सारे सामान है इसमें, जैसे गिफ्ट होते हैं, बैंगल्स होती है और कॉस्मेटिक्स वगैरह।
0: तो आपने एमए इकोनॉमिक्स में किया, तो आगे कुछ और एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए? या आपका उद्देश्य यही था कि पिता के व्यवसाय को संभालना है?
1: बात ये थी कि उसके लिए कहीं जाना पड़ता और पापा जी को मुझे अकेला कहीं भेजना मंजूर नहीं था।
0: अच्छा, हाँ, ये हमारे माता पिता का जो अति मोह है संतान के प्रति ना, उसमें वैसे अच्छी बात है कि हम ताउम्र माता पिता का साथ दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है जिंदगी में। हालांकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप खुश हैं तो सब अच्छा है।
1: बहुत बढ़िया जी।
0: तो बताइए, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: कन्यादान से मेरी जिंदगी में आते, रफी साहब की आवाज।
0: क्या बात है, तो कुछ और बात होती।
1: जी जी,
0: कोई खास मकसद इस गाने को सुनने का?
1: नहीं मैम, अल्फाज सही है, आवाज तो कोई कहने की दो राय है ही नहीं इसमें।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए
1: जी। मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ जी।
0: सोनू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी। आप मंदाकिनी जोशी जी बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: हाँ जी मैडम जी, क्या नमस्कार आपको।
0: सुनते हैं हमारे कार्यक्रम
1: जी। मैं तो रेगुलर आपसे जुड़ता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, बस क्या होता है ना, कभी कभी इबारत कुछ समझ में नहीं आती, फिर आप दो क्वेश्चन भी पूछते हैं।
0: आप जवाब देते हैं उसका?
1: हाँ जी, मैं जरूर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ आपको और मेरा नाम जुड़ा रहे अमृत भारती के साथ में।
0: तो सवाल तो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं और एक कार्यक्रम को थोड़ा सा लाइवनेस बनाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो कार्यक्रम बिल्कुल उबाऊ हो जाएगा।
1: और विविध भारती का प्रोग्राम, लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है विविध भारती का, तब से मेरे ग्रैंडफादर, फादर मेरे और मैं, वो कभी भी बोझ महसूस नहीं हुई। इतने बढ़िया प्रोग्राम होते हैं विविध भारती के।
0: मतलब आपके दादा की विरासत को आपके पापा ने संभाला और अब आप संभाल रहे हैं, है ना? जैसे हम उनके कामों को संभालते हैं कि भाई हमारे दादा की ये बिजनेस था और उनको बाद पिता ने और पुत्र ने संभाला, तो विविध भारती सुनने की भी आप लोगों ने ये एक ले रखा है प्रण कि हमारे दादाजी की सुनने की आदत को हम भी सुनने में डाल लेंगे।
1: उन्होंने कहा था ना, चैनल वो सुना जाए जिसमें अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हों। तो रेडियो ऐसा माध्यम है कि कभी इसमें गलत जानकारी मिलती नहीं, सही मिलती है हमेशा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप लोग इतने प्यार और ईमानदारी से सुनते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कार्यक्रम पेश करते हैं और आप लोग इतनी संजीदगी के साथ अपनी बात कहते हैं।
1: जी मैडम जी, देखिए आप जितने भी वीडियो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पर, वो सभी मैं देखता रहता हूँ और सभी मैं लाइक भी करता हूँ। तो आपने 90 साल का जो जश्न मनाया वो भी मैंने देखा।
0: चलिए तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: मैंने गाना सुना है जी दोस्ताना मूवी का, किशोर दा और आशा जी की आवाज में, बहुत खूबसूरत गीत है। दिल लगी ने
0: दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई
1: और आग जल पड़ी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: जिंदगी संवर गई आपकी।
1: रेडियो दीदी, हम है ना हमारे फार्म हाउस पे मस्त सुना करते हैं, मजदूर काम किया करते हैं, और आपकी वीर भारती पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम लाते हो, फोनिंग कार्यक्रम लाते हो, और गाने पुराने सदाबहार में जो सुनाते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप इतने गहराई से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उनके बारे में अपने विचार भी रखते हैं। वैसे आप खुद क्या करते हैं संतोष जी?
1: जी खेती गृहस्थी का काम है, खेती गृहस्थी का।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में?
1: जी अभी खाली पड़ा है, बस वर्षा दीदी का इंतजार है, जैसे पानी गिरता है वो हम सोयाबीन लगाएंगे दीदी।
0: तो सोयाबीन की खेती में कितनी मेहनत मशक्कत हो जाती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है?
1: दीदी जो अब जो सोयाबीन की फसल है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सिर्फ ये मेहनत फसल है, जैसे पानी का इंतजार रहता है,
0: हाँ।
1: खेतों में चारा उगवाता है तो दवाई का इंतजार रहता है, डोरे लगाना पड़ता है, बेलों का समय रहा नहीं, ट्रैक्टरों से लगाते हैं और फिर भी चारा नहीं मरता, फिर डबल दवाई उड़ाते हैं, बिल्ली की दवाई उड़ाना पड़ता है, बहुत कठिन का काम है ये सोयाबीन पैदा करना। उसके बाद भी फिर मौसम सहयोग नहीं देता है तो फिर बैठक भी बहुत कम होती है हम किसानों को, सोयाबीन की फसल में तो बहुत घाटा है।
0: सही कहा आपने, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तो फिर सोयाबीन की फसल को बार बार फिर क्यों बोते हैं, कोई कारण है खास?
1: मेहनत का तो है, फिर भी क्या है इसमें नुकसान चीज नहीं होती। अभी हम मक्का लगा दें तो जंगली सुअर खा जाते हैं, मूंगफली लगा दें जंगली सुअर खा जाते हैं, रतालू की फसल करें तो वो भी जंगली सुअर खा जाते हैं, उड़द दाल वगैरह पैदा करते हैं तो हिरन खा जाती, हिरन की मौत है हमारे इधर।
0: अच्छा, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा आपको, तो ये तो 24 घंटे की निगरानी हो गई।
1: जी ये क्या है सोयाबीन में निगरानी नहीं रखना पड़ता है, दूसरी जो फसल है इसमें बरोबर निगरानी रखना पड़ता है।
0: तो इसलिए आप सोयाबीन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं ना, कि सोयाबीन की फसल लग जाए। अपने गांव के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसा है आपका गांव?
1: हमारा गांव बहुत सुंदर है, ऐसे तो हमारे गांव के पोहे और समोसे कचौरी बड़े फेमस है।
0: क्या बात है, पोहे और समोसे?
1: यस,
0: मुंह में पानी आ गया हमारे। देखिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हम एक नई जानकारी दी है सोयाबीन की खेती के बारे में। तो संतोष जी अब गाना बता दीजिए।
1: गाना है वो प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां।
0: फिल्म का नाम क्या है?
1: मुद्दत।
0: मोहम्मद अजीज की आवाज
1: जी।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत फिर।

0: चेहरा कमल
1: बहुत अच्छा लगता है।
2: चलिए बहुत अच्छा लगा, आप इतने गहराई से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उनके बारे में अपने विचार भी रखते हैं। वैसे आप खुद क्या करते हैं संतोष जी?
1: जी खेती गृहस्थी का काम है, खेती गृहस्थी का।
2: तो अभी क्या है आपके खेत में?
1: जी अभी खाली पड़ा है, बस वर्षा दीदी का इंतजार है, जैसे पानी गिरता है तो हम सोयाबीन लगाएंगे दीदी।
2: तो सोयाबीन की खेती में कितनी मेहनत मशक्कत हो जाती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है?
1: दीदी जो अब जो सोयाबीन की फसल है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सिर्फ ये मेहनत फसल है, जैसे पानी का इंतजार रहता है,
2: हाँ।
1: खेतों में चारा उगवाता है तो दवाई का इंतजार रहता है, डोरे लगाना पड़ता है, बेलों का समय रहा नहीं, ट्रैक्टरों से लगाते हैं और फिर भी चारा नहीं मरता, फिर डबल दवाई उड़ाते हैं, इल्ली की दवाई उड़ाना पड़ता, बहुत कठिन का काम है ये सोयाबीन पैदा करना। उसके बाद भी फिर मौसम सहयोग नहीं देता है तो फिर बैठक भी बहुत कम होती है हम किसानों को, सोयाबीन की फसल में तो बहुत घाटा है।
2: सही कहा आपने, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तो फिर सोयाबीन की फसल को बार बार फिर क्यों बोते हैं, कोई कारण है खास?
1: मेहनत का तो है, फिर भी क्या है इसमें नुकसान चीज नहीं होती। अभी हम मक्का लगा दें तो जंगली सुअर खा जाते हैं, मूंगफली लगा दें जंगली सुअर खा जाते हैं, रतालू की फसल करे तो वो भी जंगली सुअर खा जाते हैं, उड़द दाल वगैरह पैदा करते हैं तो हिरन खा जाती, हिरन भी बहुत है हमारे इधर।
2: अच्छा, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा आपको, तो ये तो 24 घंटे की निगरानी हो गई।
1: जी ये क्या है सोयाबीन में निगरानी नहीं रखना पड़ता है, दूसरी जो फसल है इसमें बरोबर निगरानी रखना पड़ता है।
2: तो इसलिए आप सोयाबीन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं ना, कि सोयाबीन की फसल लग जाए। अपने गाँव के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसा है आपका गाँव?
1: हमारा गांव बहुत सुंदर है, ऐसे तो हमारे गांव के पोहे और समोसे कचौरी बड़े फेमस हैं।
2: क्या बात है, पोहे और समोसे?
1: यस।
2: मुंह में पानी आ गया हमारे, देखिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हम एक नई जानकारी दी है सोयाबीन की खेती के बारे में। तो संतोष जी अब गाना बता दीजिए।
1: गाना है वो प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां।
2: फिल्म का नाम क्या है?
1: मुद्दत।
2: मोहम्मद अजीज की आवाज
1: जी।
2: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत फिर।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज कुछ ऐसे गाने जिनमें हैं बारिश के छींटे। लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत, सुमित्रा कुमारी सिन्हा के बोल हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में यह गैर फिल्मी गीत आपने सुना।
1: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थीं, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। हवा की सांस क्यों सहमी हुई है, मेरी वाकिफ थी जब आती थी कमरे में, मेरे सीने में भर जाती थी जैसे बादवां भरते हैं कश्ती के। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे, बिलकती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है, न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।
0: मौसम का झोंका गुलजार की आवाज में आपने सुना, उनका ही ये कलाम ये कब आते हो एल्बम से था। और अब भूपिंदर की आवाज़।

आगा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे केंद्र से अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल।

0: ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
2: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
0: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद

0: क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी, फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
1: हाँ।
0: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
1: हाँ। मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
0: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है,
2: वो तारा होता है।
0: हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक,
3: वो रात और दिन भी बनाता है।
0: एकदम सही, एकदम सही।
2: वो हमें धूप भी देता है।
0: बिल्कुल, धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
1: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
0: हाँ, हमें क्या मिलता है पता है उससे?
1: विटामिन डी।
0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
2: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल, एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
1: धीरे धीरे रात घूमते, जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
1: हाँ,
3: जब तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
1: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना,
1: वो तेज चलती है, तो ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
2: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
2: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
1: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है,
2: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
1: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
2: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
0: ओह, ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
1: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
2: नहीं
0: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
4: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
4: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
4: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
4: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
4: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
4: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
4: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
4: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी, एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
2: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
1: वो भी दस
0: पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
1: मौसी
0: डर जाती
1: है। और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
2: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला और

0: अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: ये था आज का NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब आपको फिर से लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रमों की ओर।

आनंद बख्शी के बोलते रेशमा की आवाज फिल्म का नाम था हीरो। जावेद अख्तर की बोली अमिताभ बच्चन की आवाज शिवहरी की तरह से। फिल्म का नाम सिलसिला।

0: अभी आप विविध सेवा मुंबई के कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। 1 बजने को है, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। आज देश राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन कर रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि साहित्य के एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ के रूप में उनकी रचनाओं ने भारतीयों की कई पीढ़ियों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना जगाई है। उनका समृद्ध साहित्यिक योगदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करता है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी चट्टोपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा है कि उनकी अमर रचनाएं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विचार युगों युगों तक देशवासियों को राष्ट्र सेवा और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते रहेंगे। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम आज पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में जुलूसों के साथ मातम मनाया जा रहा है और मजलिसें आयोजित की जा रही हैं। राजधानी जयपुर में आकर्षक सजावट के साथ छोटे बड़े ताजियों के साथ बड़ी संख्या में मोमिन मातमी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन भर निकल

हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब अगले कार्यक्रम विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा मुंबई से।

ये सुदास के साथ हेमांती शुक्ला की आवाज बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है और यह खुशी की बात है क्योंकि कम चर्चित गायिका को अगर आपने पहचान लिया इसका मतलब आप फिल्म संगीत के सही कदरदान हैं। पहला ही गीत बहुत खूबसूरत है, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने ये रिपोर्ट की है कि यहां सिर्फ बादल छाए हैं, बारिश का इंतजार है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब है कि आपका गाना क्या है, कहां से छाए बदरा, हमें मालूम है समुद्र से आए बदरा। एक और श्रोता है जो कहते हैं, कविता में कहती हैं, बादल के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं हमारे शहर के आसमान में, जाने कब एक होकर बरसे, जाने कब प्यास बुझे सूखे अरमान की। भाई कविता करने की इन्होंने कोशिश की। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि मुझे पता था कि ये गाना बजेगा, ये मेरा पसंदीदा गाना है। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं, सफेद बादल छाए हैं बिना पानी वाले, जाने कब होगी बरसात। एक और श्रोता है जिन्होंने कविता लिख भेजी है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन की एक कविता, मजा आ गया आपने कविता लिखी। फिलीपींस से एक श्रोता का मैसेज ये है कि मौसम खुशगवार है, सूरज देवता आंख मिचौली खेल रहे हैं और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। एक और श्रोता अपने खेत पर बुवाई करते हुए सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहां बादल शादी में मुंह फुलाए फूफा की तरह घूम रहे हैं, नजर तो आएंगे पर किसी काम के नहीं है। क्या बात है भाई, आपकी इस बात और इस बात में जो व्यंग्य था उसमें बड़ा मजा आ गया है। एक और श्रोता है जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तापमान 30 डिग्री, ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हैं। देखिए भाई, देश भर के मौसम का जो हाल है वो यहां पता चल जा रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश 2-3 दिन बाद हो जाती है, लेकिन अब 3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि घटा छाई है, किसी भी मिनट बरस सकते हैं बादल। तो ये हैं हमारे तमाम श्रोता जो अलग अलग शहरों से अपने शहर के मौसम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि उनकी तमन्ना किस गाने को सुनने की है और उनका गाना और हमारा गाना मैच हो रहा है या नहीं। ये तमाम बातें यहाँ चल रही हैं और उसके अलावा एक और चीज चल रही है, वो है तेज हवा। और हवाओं से मुझे पतंग की याद आ गई। चलिए आज पतंगबाजी से जुड़ी हुई कुछ यादें शेयर करें। जल्दी से मोबाइल उठाइए और कमेंट कीजिए पतंगबाजी से जुड़ी जो आपकी सबसे शानदार याद है वो लिख भेजिए। इस गाने के फौरन बाद पतंगबाजी वाले सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं। तो शुरू हो जाइए, किसने किसकी पतंग काटी, किसने मांझा सूता, किसने पेंच लड़ाए और किसने बाजार से ताव लाकर पतंग बनाई।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में गुमराह फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। और पतंगबाजी को लेकर कितने सारे कमेंट्स आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़का अक्सर पतंग पर एक प्रेम पत्र लिखकर अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता था, वो अद्भुत दृश्य होता था। 90 के दशक में प्रेम पत्र का बड़ा क्रेज था। ये कमेंट। और इसके अलावा ये कमेंट कि हमारे गुजरात में पतंग मशहूर खंबात के बरोड़ा के जहां बनता है, हमारे गांव में दिवाली के बाद पतंग उड़ाने की शुरुआत हो जाती है, इन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि करीब 50 साल बाद इस संक्रांति में मैं और मुझसे 2 साल बड़ा भाई, जो बचपन में बहुत पतंग उड़ाते थे, हम दोनों ने पतंग उड़ाई, मांझा सूता और करीब 3 पतंग काटी, मजा आ गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पतंग से सिर्फ ये याद आता है कि रफी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हमको उड़ानी तो नहीं आती है, पर अपने भाई की चकरी जरूर पकड़ कर रखते थे। रफी साहब को ही नहीं बल्कि मन्ना डे को भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पतंग बहुत बनाई लेकिन कभी किसी से पींच नहीं लड़ाया, बस ऐसे ही पतंग उड़ाने में मजा आता रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमीरगढ़ राजस्थान से हम लिख रहे हैं और कल ही तेज बारिश हुई है। उसके अलावा एक और श्रोता पतंग की बात पर लिखती हैं कि मेरे भाई कांच की बोतल को फोड़कर पीसकर महीन करके उससे मांझा सूतते थे और मैं पतंग तो उड़ा नहीं पाती थी लेकिन लटाई पकड़ने का काम मेरा होता था। भाई बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें जो छोटे होंगे और उनके बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी, जाहिर है कि पतंग उड़ाने का काम जो है वो बड़े भाई या बड़ी बहन को होता मिलता था और चक्री पकड़ने का काम छोटे भाई बहनों को मिलता था। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ चक्री पकड़ने का काम मिला और आपने कई बार ये जोर दिया कि भाई मुझे भी तो दो, मुझे भी तो जरा पतंग उड़ाने दो। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज की इबारत पकड़कर मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं। मन को रंगीला करने वाली बारिश की कहानी बताना चाहूंगा कि शादी के अगले साल मैं और पत्नी बारिश के मौसम में अजमेर से लूनावाला खंडाला गए थे। किराए पर बाइसाइकिल ली और भीगते हुए दोनों घाटों तक चले गए। ना आसमां का पता था न जमी का, बस खाइयों का नजारा था। अच्छा अच्छा, ना आसमां का पता हो न जमी का, इस पंक्ति से उन्हें याद आ गई अपनी ये बात। एक और श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को हमारे यहां पतंगबाजी होती है। और इसके अलावा एक और श्रोता वो लिखते हैं कि जयपुर में हमारे यहाँ कल बहुत बरसात हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बारिश में कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब परीक्षाएं मई जून तक खिंच जाती थीं और समझ नहीं आता था कि पढ़ाई करें या बारिश के मजे लें। इसके अलावा एक और श्रोता है वो लिख रही हैं कि क्या बोलें, ये बारिश की कहानी आपके लिए, बादल आ भी जाए तो डिलीवरी का पता नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो बारिश के इंतजार में हैं। और कई श्रोताओं ने जिस तरह से पतंग की यादें बांटी हैं, हो सकता है कि कुछ और श्रोता अभी रह गए हों और उनके कमेंट्स आते ही होंगे, तो उनकी बातें भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तब तक जरा आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ, जो बहुत ही झुमा देने वाला गाना है। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी, लता मंगेशकर की आवाज। इस गाने के गीतकार का नाम बताइएगा।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना गीतकार नीरज ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारा बेटा 1000 रुपए की पतंग लाता है संक्रांति में, दोस्तों के साथ खूब उड़ाया करता था। अब पोते छोटे हैं और वो थोड़े थोड़े मज़े लेते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो सूरत गुजरात में हैं और वो भी इसी तरह पतंगबाजी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट हैं। सौराष्ट्र गुजरात के हमारे कुछ श्रोताओं के ये मैसेज हैं कि किसान वहाँ बेसब्री से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि बुवाई समय पर हो। अभी तक ज़मीन में बीज पड़ जाने चाहिए थे लेकिन देर हो चुकी है, बारिश नहीं आ रही है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि बचपन में पढ़ाई के दौरान मई जून में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शाम को बहुत पतंग उड़ाई है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये सही बात है कि छोटा भाई मैं था तो बड़े भाई साहब पतंग उड़ाते थे और मेरा काम था चकरी पकड़ना, पर मैंने ये महसूस किया कि चकरी पकड़ना भी एक कला है। एक और श्रोता लिखते हैं कि ना तो मैंने चकरी पकड़ी ना पतंग उड़ाई, लेकिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखने में बड़ा मज़ा आता था और जब पतंग कटकर आती थी छत पर तो जल्दी से उठाकर अपने बड़े भाई को दे देती थी। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे गाँव में यदा कदा कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं और ख़ास त्योहारों पर उड़ाते हैं। बचपन की याद ये है कि 2 पैसे में 4 पतंग लेकर आते थे और उड़ाते थे। अहमदाबाद में 2 साल पहले 2 महीने मैं वहां रहा तो आसमान पतंगों से भर गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता लेकिन जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ा करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि पतंग से पींच लड़ाने में मजा तो बहुत आता था लेकिन कई बार ये होता था कि दूसरे की पतंग काटने के चक्कर में अपनी ही पतंग उड़ जाती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे चक्री पकड़ा दी जाती थी जो इतनी तेजी से घूमती थी कि डर लगता था। तो ये पतंग की बातें बातों बातों में इतनी दूर तक चली आई कि अब हम चल रहे हैं आसमां के नीचे।

ये बताइए कि आज सुबह से आपके होठों पर, आपके जहन में कौन सा गाना तैर रहा है? आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके दिलो दिमाग पर हावी है?

भाई ये गाना हो गया और बहुत सारे श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं हमने शामिल करने की लगातार कोशिश की, और अभी भी जब भी कोई गाना ख़त्म होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सभी श्रोताओं के जो कमेंट इस बीच में आए हैं वो सभी शामिल कर लिए जाएं। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हाँ आपके गाने और हमारे गाने मैच हो रहे हैं। एक श्रोता पता नहीं लपक झपक तू आर्य बदरवा गाने का जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो आज

किस फिल्म का है ये गाना ये बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि जब मौसम सुहाना होता है तो आपके होंठों पर कौन सी पंक्तियां आती हैं।

पतंग की बातें क्या हुई, बहुत सारे श्रोताओं की बचपन की, यार उसमें पाउडर मिलाते थे ताकि पतंग फटाफट काटी जाए। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख कहते हैं कि कहाँ गया ये कमेंट। एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती के सुबह से गाने सुने तो जो गाना सुबह सुनाई देता है वही जहन में गूंजने लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंगबाजी के कार्यक्रम के बाद खाने की सामग्रियां खाई जाती हैं, ये शायद संक्रांति को याद कर रहे हैं, तिल के लड्डू और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें याद की हैं। और इसके अलावा जो बहुत नीचे के कमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो उनमें कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने, अब जैसे ये श्रोता है, इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी बहन भाइयों को पतंग बांट कर देते थे, खरीद कर देते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़ी सी चीज़ की लालच देकर मेरी सारी पतंगें अपने कब्जे में कर लिया करते थे। ये बचपन की याद उनको आ गई है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता है, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में बहुत पतंगें उड़ाई हैं और 15 फीट ऊँची छत से गिर कर बगैर चोट खाए खड़े भी हो गए। ओहो हो हो, खतरनाक बात है भाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 60 साल से ज़्यादा की उम्र है और 15 से 20 पतंग और चरखियाँ एक समय में मेरे घर पर हमेशा होती हैं। आसपास कोई उड़ाता तो नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी ऊंची पतंग 1 घंटे तक उड़ाता हूँ, ये बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है। ओ भाई, ये श्रोताओं की बातें। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या यही कैफियत आपकी है जो इन साहिबा की है। बारिश का इंतजार है और तमाम बातें हो रही हैं, तो बारिश में की गई किसी रेल यात्रा की यादें हमारे साथ साझा कीजिए।

कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार पैसेंजर ट्रेन का लंबा सफर बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ करते थे, टीन वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीग कर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफर की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है, और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था, मैंने उससे पेंच लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए, पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताज़ा हो गई हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये

भाई ये गाना खत्म हुआ और कार्यक्रम के आखिरी मकाम तक हम आ चुके हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट आया जिसमें उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है, फटाफट पढ़ देते हैं। रिमझिम बूंदों का खिड़की को खटखटाना, लगता है आया है गुजरा हुआ जमाना, कागज की कश्तियों का वो दौर पुराना, छत से वो गिरते हुए पानी को चुराना, वो सोंधी सी मिट्टी की खुशबू का आना, बचपन की वो यादें फिर से बुलाएं, कभी मन मुस्काए कभी आंख भर जाए, खिड़की पे बैठकर चाय का प्याला, यादों ने फिर कोई किस्सा निकाला, भीगा है मंजर ये दिल भी है गीला, मौसम ने पहना है ये रंग सुरीला। सुंदर कविता है और आप सभी ने जिस तरह की सुंदर यादें बांटी हैं, कुछ बारिश वाले रेल के सफर की यादें हैं जो कार्यक्रम में शामिल हम भले नहीं कर पाए हों, लेकिन हम इन सभी यादों को आराम से बैठकर पढ़ेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने ज़माने का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफ़र आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा

0: याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम

0: इनमें दो भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम
2: लता मंगेशकर की आवाज़।

0: भारती से बोल रही हैं, आइए सुनिए सदाबहार नगमे।
1: वो जब याद आए बहुत

राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज, वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, संगीत

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गोदान फिल्म का गाना था। अनजान की बोल थी, संगीत पंडित रविशंकर का था। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है
1: हाँ
0: आपके?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ,
0: क्या बात है,
1: विविध
0: शुक्रिया
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी
1: और
0: जी
1: मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
0: अच्छा जी, निशा जी, आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ
0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: जी। हाँ।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम, जिंदगी
0: पूनम जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: में तो मतलब बस हाउसवाइफ है मैडम जी।
0: हाउसवाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी, पूरे परिवार का
1: हाँ
0: ख्याल रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ जी
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में। और ये कला जो होती है ना, अद्भुत है
1: जी
0: ये कला। हर

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी
1: जी
0: कलाओं में
1: जी
0: आप निपुण हैं, है ना?
1: जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी हैं या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है, तो

0: मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
1: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
0: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं, और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी।
1: ये
0: ऐसा
1: बहुत
0: मेरा
1: सही
0: मानना है।
1: बात आपने कही कि अगर एक

0: खुश रहे, फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी।
1: ये बहुत सही बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सई जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
0: जी जी एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है, वो मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज़ है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते
1: धन्यवाद
0: गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: और सुना भी है, और हमने उन उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी।
0: आप क्या काम करती है वहां पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है। हाँ,
0: वहां जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। ने प्रकाश बाबा हम ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला, और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा है
1: और
0: आपको
1: यहाँ
0: वहां जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: क्योंकि जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
1: जी
0: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
1: जी
0: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ, मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं।

0: तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
1: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: हमको मन की शक्ति देना, यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है। और यह गीत फिल्म गुड्डी का है, जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
1: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। तो सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
1: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के
0: या
1: हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे
0: हाँ
1: मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए
0: जी
1: जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं
0: हाँ
1: आपके पसंद का ये गीत।

0: जी हाँ जी जी
1: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
0: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके।
1: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना
0: हाँ
1: जी,
0: जी
1: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी
0: जी
1: किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
0: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ। जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
1: ये तो बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
0: जी
1: सुनना चाहती हैं?

सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से, तो जल्दी से

गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था, रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था,

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलूनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

गुजर जाए। तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था, उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे, रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता। यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए कुछ सूझ नहीं रहा था, ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलभेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि सौ राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावना

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि सौ राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावना

हाँ बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे, कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे

तू में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था, पर उस पर दिल के जज्बात उतारना

देना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे, कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे। आगे बढ़ गए, कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी जी जी कुछ नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

उन दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: सकते हैं।
1: ऐसा सफर जहाँ आवाज सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि सोच बन जाती है, पहचान बन जाती है और कभी कभी बदलाव की शुरुआत भी बन जाती है। दोस्तों
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का सुरों से सजी इस हसीन शाम में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अपना दिलों को जोड़ने वाला और युवाओं की धड़कनों से जुड़ा कार्यक्रम युववाणी।
1: मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर अंतिमा और हमारे साथ है हमारी एक और साथी
2: श्रोताओं। मैं हूं शिल्पा।
1: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस खास शाम में हम लेकर आए हैं नई ऊर्जा, नई सोच, कुछ मुस्कुराहटें,
2: कुछ सवाल और ढेर सारी बातें जो सीधे आपके दिल से जुड़ती है।
1: दोस्तों युवा होना सिर्फ उम्र का एक हिस्सा नहीं होता, यह एक सोच है, एक जुनून है, कुछ नया करने की बेचैनी है और हर हाल में आगे बढ़ने का हौसला है।
2: बिल्कुल सही कहा अंतिमा। आज का युवा सपने देखता भी है और उन्हें पूरा करने के लिए रातों की नींद भी छोड़ देता है।
1: कभी वह किताबों के बीच अपनी मंजिल तलाशता है तो कभी अपने हुनर से दुनिया को नई दिशा देने की कोशिश करता है।
2: कभी सोशल मीडिया उसकी पहचान बन जाता है तो कभी उसकी मेहनत उसकी सबसे बड़ी आवाज बन जाती है।
1: और दोस्तों युवाणी कार्यक्रम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, यह एक मंच है जहाँ हर युवा की सोच को सम्मान मिलता है,
2: जहाँ हर आवाज सुनी जाती है, जहाँ हर कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती
1: है। जी हाँ, यहाँ हम बात करेंगे आपके सपनों की, आपके संघर्षों की,
2: आपकी छोटी छोटी जीतों की और उन अनुभवों की जो आपको हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाते हैं।
1: क्योंकि कोई भी सफलता अचानक नहीं मिलती है, वह बनती है रोज रोज की छोटी छोटी कोशिशों से,
2: कभी गिरने से, कभी संभलने से
1: और कभी खुद को फिर से खड़ा करने के साहस से।
2: तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर पल नई सोच से भरा होगा,
1: हर बात में सीख होगी और हर मुस्कान में एक नई उम्मीद छिपी होगी।

0: प्रभु
1: जी मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
0: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
1: तो लेन देन
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: दोस्तों, इस खूबसूरत से अंतराल के बाद आपका कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी। शिल्पा, हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन आज स्टूडियो आते वक्त मैंने रास्ते में कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया।
1: ऐसा क्या देख लिया अंतिमा आपने?
0: एक बदहवास माँ अपने जवान बेटे के बेजान शरीर से लिपट कर चीख रही थी, क्योंकि कल रात उसके लड़के ने ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया था।
1: अंतिमा, तुम्हारी ये बात सुनकर तो सच में मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। आज 26 जून है, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति और अवैध तस्करी विरोधी दिवस। लेकिन हमारे समाज की हकीकत यह है कि आज का दिन सिर्फ एक तारीख बनकर रह गया है,
0: बिल्कुल,
1: जबकि सड़कों पर मौत का ये खुला खेल धड़ल्ले से चल रहा है।
0: बिल्कुल शिल्पा, सबसे ज्यादा गुस्सा तो उन सफेद पोश

0: हिंसा से जूझ रहा है, तो डरिए मत, इस नंबर पर कॉल कीजिए, वहाँ आपकी पहचान गुप्त रखकर पूरी मदद की जाएगी।
1: तो आइए आज इस मंच से हम सब मिलकर एक कसम खाते हैं, हम आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे, अपने समाज को, अपने दोस्तों को इस दलदल में डूबने से बचाएंगे। याद रखिए दोस्तों, ये जिंदगी खुदा का सबसे खूबसूरत तोहफा है, इसे इस जहर के धुएं में बर्बाद मत होने दीजिए।
0: बहुत सही बात कही शिल्पा, चलिए इसी गहरे संकल्प के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक।

0: यहाँ बड़ी बड़ी दुकानों पर जाकर मॉल में या बिना मोल भाव किए हजारों रुपए दे आते हैं, पर जब चाय की दुकान से 10 रुपए की चाय लेते हैं ना, तो शायद उनकी मेहनत की कीमत नहीं समझते।
1: बिल्कुल, ये दिन एक वादा करने का दिन है अंतिमा, वादा ये कि अपने आसपास के इन छोटे हुनरबाजों का हाथ थामने का। आत्मनिर्भर भारत का सपना तब तक अधूरा है अंतिमा जब तक हम लोकल के लिए वोकल नहीं होते।
0: तो दोस्तों आज ही जाइए अपने पास की छोटी दुकान से खरीदारी कीजिए, उनके चेहरे पर आई एक छोटी सी मुस्कान ही इस दिवस की असली कामयाबी होगी।

0: कि उनका दर्द कम क्यों नहीं होता, क्योंकि हम उन्हें सिर्फ हमदर्दी के दो शब्द देते हैं, उनका हक नहीं। जो इस दौर से गुजरा है उसकी हर रात आज भी उसी खौफ के साए में गुजरती है।
1: बिल्कुल, ये खौफ तब तक खत्म नहीं होगा अंतिमा जब तक हम और आप अपनी आंखें बंद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र का फंड दुनिया भर में घायलों का इलाज तो कर रहा है, लेकिन समाज के दिए जख्मों का इलाज कौन करेगा? ये लड़ाई अकेले उनकी नहीं है, ये हमारी भी है।
0: तो आज इस माइक के जरिए हम उस इंसान की आवाज बनते हैं जिसकी जुबान पर ताले लगा दिए गए।
1: जी बिल्कुल।
0: अगर आपके आसपास कहीं भी प्रताड़ना हो रही है तो सहिए मत, देखिए मत, अपनी खामोशी को तोड़िए, क्योंकि आपकी चुप्पी जालिम का सबसे बड़ा हथियार है।
1: आज उन सभी जाबाजों को हमारा सलाम है जिन्होंने उस अंधेरे को मात दी और आज दोबारा उठ खड़े हुए हैं। आपकी हिम्मत ही इस बेरहम दुनिया को जीने लायक बनाती है।
0: आप अकेले नहीं है, पूरी दुनिया आपके साथ है।

0: से अंतिमा कुमारी जी की बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, चिराग जल रहे युवा डायरी में आज इस मंच पर हम ऐसे युवाओं से आपको रूबरू करवाते हैं जो अपने सपनों को मेहनत और सीखने के जुनून से रोशन कर रहे हैं। आज हमारी मुलाकात एक ऐसी युवा प्रतिभा से होगी जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के साथ सिलाई और मेहंदी का प्रशिक्षण भी ले चुकी हैं और भविष्य में ब्यूटी एंड वेलनेस के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं। आइए जानते हैं उनके संघर्ष, सपनों और सफलता की इस प्रेरणादायक यात्रा के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिचय से ही श्रोताओं को अवगत कराएं।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रेरणा परिहार है, मैं झलावाड़ जिले के भवानी मंडी से आई हूँ।
1: प्रेरणा, हम आपके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय थोड़ा विस्तृत में दें।
2: वर्तमान में मैं नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी कर रही हूँ। मुझे बच्चों के साथ समय बिताना बहुत पसंद है, उनको कुछ सिखाना, उनसे सीखना, हर नई नई एक्टिविटी बहुत पसंद है। इसके साथ ही मैंने सिलाई मेहंदी का प्रशिक्षण भी लिया है। आगे चलकर मैं ब्यूटी एंड वेलनेस के क्षेत्र में अच्छी पहचान बनाना चाहती हूँ जिससे मैं एक ब्यूटिशियन साबित। व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार सीखना चाहिए क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
1: प्रेरणा, आप कहीं सारे हुनर सीख रही हैं लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने का निर्णय क्यों लिया, इसके बारे में हमें बताएं।
2: मुझे बचपन से ही छोटे बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे उन्हें पढ़ाना, खेल खेल में नई बातें सिखाना और उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को देखना बहुत खुशी देता है, इसलिए मैंने एनटीटी करने का फैसला किया। इस ट्रेनिंग से मुझे बच्चों के व्यवहार, उनकी अच्छी आदतें, बुरी आदतें, हर एक एक्टिविटी के बारे में पता चला। उन्हें आसान तरीके से पढ़ाने के बारे में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला।
1: जैसा कि आपने बताया कि आपने सिलाई और मेहंदी का प्रशिक्षण भी लिया है, इस क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे बनी, हम जानना चाहते हैं।
2: सिलाई और मेहंदी दोनों ही रचनात्मक कार्य है। मुझे हमेशा से ही कुछ नया बनना और अपनी कला को लोगों के सामने प्रस्तुत करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस दोनों का प्रशिक्षण लिया है। इससे केवल मेरी कला में निखार आया है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा है। मेरा मानना है कि ऐसी कला जीवन में कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। मेरा मानना है कि सबको यही करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बताया आपने, हर किसी को कोई न कोई हुनर जरूर सीखना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने बताया अभी कि आप ब्यूटी एंड वेलनेस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहती हैं, तो इसके पीछे क्या सोच है आपकी?
2: आज के समय में ब्यूटी एंड वेलनेस का क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर कोई ब्यूटी के क्षेत्र में जाना चाहता है। मुझे लोगों को बेहतर महसूस कराने और उनकी सुंदरता को निखारने का काम पसंद है, इसलिए मैं इस क्षेत्र में एक अच्छी और प्रशिक्षित ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि भविष्य में अपना खुद का भी एक ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी स्टूडियो होना चाहिए। अन्य लड़कियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान होने चाहिए, इससे हम इस क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं, अच्छा करियर।

0: सुंदरता को निखारने का काम पसंद है, इसलिए मैं इस क्षेत्र में एक अच्छी और प्रशिक्षित ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि भविष्य में अपना खुद का भी एक ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी स्टूडियो होना चाहिए। अन्य लड़कियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान होने चाहिए, इससे हम इस क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हर एक चीज कर सकते हैं।
1: ये सब हुनर सीखने के बाद प्रेरणा, हम जानना चाहते हैं कि आपका सपना क्या है और आप अपने भविष्य को किस रूप में देखती हैं।
0: मेरा सपना है कि मैं एक सफल ब्यूटिशियन बनने के साथ साथ प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भी पढ़ाऊं। मैं चाहती हूं कि मेरी पहचान एक ऐसी महिला के रूप में बने जो शिक्षा और स्वरोजगार दोनों क्षेत्र में सफल हो। मैं लगातार सीखते हुए अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करना चाहती हूं। मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, मैं चाहती हूं कि उनका नाम रोशन करूं, को मेरे पे गर्व फील हो। मैं चाहती हूं कि मैं एक अच्छी लड़की बनूं, मतलब मैं ब्यूटिशियन के क्षेत्र में बहुत आगे जाना चाहती हूं। इससे मेरे घर वालों को लगे कि मैं एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हूं, हर एक काम में परफेक्ट हूं, मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है।
1: अपने सपनों को लेकर आप बहुत अच्छी सोच रखती हैं प्रेरणा। जो भी लड़कियां आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रही हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैडम, मैं सभी लड़कियों को कहना चाहती हूं कि वे अपने सपनों को कभी छोटा ना समझे। अगर सीखने की इच्छा और मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। हर लड़की को किसी न किसी कौशल में प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके।
1: प्रेरणा, आपकी सफलता के पीछे किसका सबसे बड़ा योगदान है, हम जानना चाहते हैं।
0: मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे पापा का, उनके पीछे मेरी मम्मी का। माता पिता अगर साथ होते हैं तो हम बहुत आगे जाते हैं, कॉन्फिडेंसली बहुत

0: सुंदरता को निखारने का काम पसंद है, इसलिए मैं इस क्षेत्र में एक अच्छी और प्रशिक्षित ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि भविष्य में अपना खुद का भी एक ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी स्टूडियो होना चाहिए। अन्य लड़कियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान होने चाहिए, इससे हम इस क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हर एक चीज कर सकते हैं।
1: ये सब हुनर सीखने के बाद प्रेरणा, हम जानना चाहते हैं कि आपका सपना क्या है और आप अपने भविष्य को किस रूप में देखती हैं।
0: मेरा सपना है कि मैं एक सफल ब्यूटिशियन बनने के साथ साथ प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भी पढ़ाऊं। मैं चाहती हूं कि मेरी पहचान एक ऐसी महिला के रूप में बने जो शिक्षा और स्वरोजगार दोनों क्षेत्र में सफल हो। मैं लगातार सीखते हुए अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करना चाहती हूं। मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, मैं चाहती हूं कि उनका नाम रोशन करूं, को मेरे पे गर्व फील हो। मैं चाहती हूं कि मैं एक अच्छी लड़की बनूं, मतलब मैं ब्यूटिशियन के क्षेत्र में बहुत आगे जाना चाहती हूं। इससे मेरे घर वालों को लगे कि मैं एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हूं, हर एक काम में परफेक्ट हूं, मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है।
1: अपने सपनों को लेकर आप बहुत अच्छी सोच रखती हैं प्रेरणा। जो भी लड़कियां आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रही हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैडम, मैं सभी लड़कियों को कहना चाहती हूं कि वे अपने सपनों को कभी छोटा ना समझे। अगर सीखने की इच्छा और मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। हर लड़की को किसी न किसी कौशल में प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके।
1: प्रेरणा, आपकी सफलता के पीछे किसका सबसे बड़ा योगदान है, हम जानना चाहते हैं।
0: मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे पापा का, उनके पीछे मेरी मम्मी का। माता पिता अगर साथ होते हैं तो हम बहुत आगे जाते हैं।

0: दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शिल्पा और हमारे साथ हैं
1: अंतिमा।
0: दोस्तों, हम सब सुन रहे हैं युवानी कार्यक्रम और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान समाज सुधारक, दूरदर्शी शासक और शिक्षा के प्रबल समर्थक की, जिनकी जयंती हर वर्ष बड़े सम्मान के साथ मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शाहू जी महाराज की।
1: बिल्कुल शिल्पा, छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को हुआ था। वे कोल्हापुर रियासत के शासक थे और उन्होंने अपने शासन काल में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए।
0: बिल्कुल सही कहा, उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज में समानता और प्रगति का सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए उन्होंने गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए

0: दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शिल्पा और हमारे साथ हैं
1: अंतिमा।
0: दोस्तों, हम सब सुन रहे हैं युवानी कार्यक्रम और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान समाज सुधारक, दूरदर्शी शासक और शिक्षा के प्रबल समर्थक की, जिनकी जयंती हर वर्ष बड़े सम्मान के साथ मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शाहू जी महाराज की।
1: बिल्कुल शिल्पा, छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को हुआ था। वे कोल्हापुर रियासत के शासक थे और उन्होंने अपने शासन काल में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए।
0: बिल्कुल सही कहा, उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज में समानता और प्रगति का सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए उन्होंने गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए जारी है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान आपसी सौहार्द बनाए रखें, प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करें।
1: बिल्कुल, जब समाज में प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहती है तभी हमारा देश और अधिक मजबूत बनता है।
0: बिल्कुल, मुहर्रम के इस पावन अवसर पर हम सत्य, न्याय, त्याग और मानवता के मूल्यों को अपनाने का अपने जीवन में संकल्प लेते हैं।

0: दोस्तों, वक्त है बहुत ही खास सेगमेंट का, करंट अफेयर्स का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। दोस्तों, वो हाल फिलहाल ही 2 जनवरी 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इंडियन फार्माकोफिया यानी कि आईपी 2026 का 10वां संस्करण जारी किया है। इसमें 121 नई औषधि मोनोग्राफ जोड़ी गई, जिससे भारत के दवा मानकों को और मजबूत किया गया।
1: हाल ही में 2 जनवरी 2026 को विदेश मंत्री ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर शोध सहयोग बढ़ाना है।
0: इसके अलावा हाल ही में 6 जनवरी को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अपना इंटीग्रेटेड स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल यानी कि बीटा संस्करण लॉन्च किया है, जिससे मानक बनाने की प्रक्रिया डिजिटल हुई है।
1: इसी के साथ 12 जनवरी 2026 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने PSLV-C62 मिशन के प्रक्षेपण की शुरुआत की, जिसमें EOS-N1 सहित कई उपग्रह शामिल थे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने नंदिमा जी। और साथ ही 22 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम स्टेशन पर अपना पहला AI आधारित ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया, जो फेस रिकॉग्निशन, भीड़ की निगरानी और सुरक्षा कार्य कर सकता है।
1: इसी के साथ हाल ही में 23 जनवरी 2026 को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा भी की गई।
0: दोस्तों, 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, साथ ही पद्म पुरस्कार 2026 की भी घोषणा की गई थी।

0: साथियों, इसी के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: उम्मीद है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचार जगाए होंगे,
0: नई प्रेरणा दी होगी
1: और कुछ नया सीखने का मौका भी दिया होगा।
0: दोस्तों, युवाणी का मकसद सिर्फ बातें करना नहीं
1: बल्कि युवाओं की आवाज को मंच देना,
0: सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाना
1: और समाज में बदलाव के बीज बोना है। तो दोस्तों, हमारी बातें इसी तरह से जारी रहेंगी, हम आपसे मिलते रहेंगे हर बार युवाणी कार्यक्रम में। मगर क्या करें, फिलहाल तो अलविदा कहने का वक्त हो चला है। मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा
0: और मैं हूं अंतिमा।
1: फिलहाल के लिए हम आपसे अलविदा कहते हैं, अगली बार फिर से मुलाकात होगी आप सभी से युवाणी कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये झालावाड़ केंद्र है FM 103.2 MHz पर। शाम के 5:55 हो रहे हैं और अब समय है हमारे शेष रहे कार्यक्रमों के प्रसारण समय का, तो आइए सुनते हैं उन्हें कार्यक्रम विवरण में।

श्रोताओं से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 6:05 का समय रहेगा फिल्म संगीत का।

6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी और फिर आप सुन सकते हैं राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी की जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

शाम के 7 बजे किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल। कृषक चौपाल में आज की जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय छत्रपति शाहू महाराज की जयंती, मुहर्रम के बारे में चर्चा और इन्हीं सभी के बारे में चर्चा के साथ साथ आज की जो भेंट वार्ता का विषय रहेगा सोयाबीन की उन्नत खेती। डॉक्टर शंकर लाल यादव जिनसे बात करेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। जानकारी में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में और इसके साथ साथ होंगे बाजार भाव समर्थन मूल्य के बारे में जानकारी और लोकगीत। तो सुनना ना भूले शाम के 7 बजे कृषक चौपाल कार्यक्रम।

7:30 मिनट पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फिल्म संगीत का समय रहेगा रात्रि 8:15 का।

रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और 9 बजे का समय रहेगा गैर फिल्मी गीत गजल और भजनों के कार्यक्रम सबरस का।

0: तो ये थे हमारे आशीष रहे कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। आकाशवाणी का ये झालावाड़ केंद्र है और अब थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नॉर्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में

0: में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि एआई विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। शाम के 6:05 हो रहे हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में आइए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम फिल्म इम्तिहान के इस गीत के साथ। गीत के लिए बोल लिखे हैं फैज़ अनवर ने और संगीत है अनु मलिक का।

0: बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र है। शाम के 6:28 होने को हैं और थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और फिर अंत में आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये भी कोई बात हुई ज्ञानचंद, अरे अपने सेठ धनालाल को ही ले लो, उनके घर में एक नहीं चार चार शौचालय बने हुए हैं और आज उनके घर में किस चीज की कमी है बताओ।
2: लेकिन हरी भाई,
1: अरे देखो ज्ञानचंद, अब लेकिन बेकिन छोड़ो और अपने घर में शौचालय बनवाओ। अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने घर की औरतों के बारे में सोचो, और अब तो घर में शौचालय बनवाने के लिए सभी ग्राम पंचायतें अनुदान भी देती हैं।
2: ठीक है हरी भाई, मुझे आपकी बात सही लगती है, मैं आज ही सरपंच जी के पास जाता हूँ और इसकी सारी जानकारी लेता हूँ, लेकिन अभी तो मैं चलता हूँ।
1: अरे
2: लेकिन पेट में जोरों से गुड़गुड़ हो रही है।
1: अरे शौचालय जरूर बनवा लेना।
2: हाँ हाँ जरूर बनवा लूंगा।
3: गाँव गाँव की गली गली
4: डी फ्री डिश, इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स, और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं।
5: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच कर्बला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, मॉनसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर जयपुर में कल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान करेंगे। वेरिको की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेंगे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, ODOP कॉफी टेबल बुक और रैम पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे। समारोह में रिको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, राज्य मंत्री के विश्नोई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। युवाओं और नई पीढ़ी में नशे तथा मादक पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने और उन्हें जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर देश प्रदेश में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। श्री शाह ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 1,18,00,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं।
6: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर

0: हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल से आगामी 4 जुलाई से उड़ानें संचालित हो जाएंगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में पत्रकारों को बताया कि नए टर्मिनल से हवाई सेवाएं शुरू होने से पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यहां पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
1: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अपितु पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी, उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग थी, आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाएं। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहीदों की याद में जुलूस के साथ ताजिये निकाले जा रहे हैं। इन्हें करबला मैदानों में परंपरागत तरीके से दफनाया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश भर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मजलिसें और धार्मिक की गई। जयपुर के रामगंज, दिल्ली रोड और चार दीवारी क्षेत्र में जगह जगह लंगर और पानी की छबीलें लगाई गई। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर मुहर्रम के मौके पर बड़ी संख्या में जायरीन ने फातिहा पढ़ी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ सहित

हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल से आगामी 4 जुलाई से उड़ानें संचालित हो जाएंगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में पत्रकारों को बताया कि नए टर्मिनल से हवाई सेवाएं शुरू होने से पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यहां पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां

0: माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं।

प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। इसके लिए आईआरसीटीसी के टूरिज्म पोर्टल पर या आईआरसीटीसी पर्यटन कार्यालयों पर बुकिंग कराई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच कर्बला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, मॉनसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मातमी पर्व मोहर्रम आज श्रद्धा के साथ मनाया गया। जिले में सुबह से ही रंग बिरंगे ताजिए निकाले गए। इस दौरान मोमिनों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन किए। इससे पहले प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए शहर

0: ही भारत माए भारत रा स्वयं सेवका नशा रह दुष्प्रभाव रा बारा माए जानकारी दी। पाली रा बाली माए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय री कानीसू कार्यक्रम राख्या गया। इन रह चालता समाज ने नशे रे नुकसान सू जागरूक करो गयो और नशा मुक्त भारत रे निर्माण माए सहयोग करने रो संदेश दियो गयो। स्वास्थ्य मंत्रालय दवा नियमा माए संशोधन रो मसौदो जारी करियो है। इंड्रे तहत आयात करी जावण वाली दवावां री बचोड़ी वैधता अवधि यानी सेल्फ लाइफ आयात रे बखत कम सू कम 12 महीना होनो जरूरी वेला। हालांकि जैविक दवावां और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवावां खातिर मौजूदा नियम लागू रह वेला। इन खातिर आयात री बखत कम सू कम 60% सेल्फ लाइफ होनो जरूरी वेला। मंत्रालय रे मुजब इन संशोधन सू दवावारी गैर जरूरी बर्बादी कम वेला और दवा भंडार रो बेहतर उपयोग वे सकेला। मंत्रालय स्पष्ट करयो है ओ प्रस्ताव केवल आयात रे बकत दवावारी बचोड़ी सेल्फ लाइफ सू जुड़ियोड़ो है। जोधपुर हवाई अड्डा माथे नुआ टर्मिनल सू आवती 4 जुलाई सू उड़ाना संचालित वेला। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर माए पत्रकारा ने बतायो कि नुआ टर्मिनल सू हवाई सेवावां शुरू होने सू पश्चिमी राजस्थान री कनेक्टिविटी बदली और पर्यटन और औद्योगिक विकास ने नुवी ऊंचाइयां मिले ली।
1: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अभी तो पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते

भारतीय सैनिकारी सही सूची देश ने देने री बात कही ही। भीलवाड़ा माए जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र री कानिसू औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगायो गयो। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा बतायो कि इन मौके माथे युवा संबल मेलो भी राख्यो गयो। इनरो लखस युवावां ने उद्यमी रे तौर माथे प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार खातिर प्रेरित करयो गयो है। झुंझुनू जिले रे कुतुबपुरा गांव माए नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान री कानिसू आज नॉन वाटर शेड परियोजना रो शुभारंभ हुयो। नाबार्ड रा मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ग्रामीणा ने बिरखा रे पानी ने भिड़ो करने और खेता माए अजोला और कम पानी री फसलां उगाने रो हेलो करयो। इन मौके माथे वणा खेतर माए बैंकिंग सेवावां रे विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजनावां री शुरुआत री बात भी करी। आईआरसीटीसी नुओ पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर शुरू करयो है। इन रे खातिर भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जावेली। प्रायोगिक तौर माथे शुरू होने माथे इन 11 दिन री रेल यात्रा रे चालता श्रद्धालुओं और सैलानियों ने उत्तर प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंगाल और झारखंड रे खास तीर्थ स्थला माथे जावन रो मौको मिलेला। आ यात्रा दिल्ली माए सफदरगंज रेलवे स्टेशन सु शुरू वेली। रेलगाड़ी माए यात्रियों ने 3-स्टार होटल माए रुकाणो भोजन समेत एसी वाहना माए दर्शनीय स्थल माथे घुमाया जावेला। इनरे खातिर आईआरसीटीसी रे टूरिज्म पोर्टल माथे या आईआरसीटीसी पर्यटन कार्यालय माथे बुकिंग कराई जा सके है। अर अब मौसम प्रदेश माए लाडला 24 घंटा रे चालता पूर्वी और पश्चिमी भागा माए कुछ एक जगावा माथे बारिश की गतिविधियां दर्ज करी जी। इन रे चालता दक्षिणी जिला माए भी कई जगावा माथे तेज बिरखा दर्ज हुई। मौसम महकमे रे मुजब झालावाड़ जिला रा अकलेरा माए सबसू 32.5 सेंटीमीटर बिरखा दर्ज हुई। राजधानी जयपुर समेत आसे पासे रे इलाका माए आज बादल छाया रिया और कई जगावा माथे बूंदाबांदी भी। महकमा रे मुजब आवता 2-3 दिना माए बीकानेर जयपुर भरतपुर अजमेर और कोटा संभाग माए प्री मानसून री बिरखारी गतिविधियां बणियोड़ी रह सके है। इन बीचे मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश रे कई और भागा माए आगे बढ़ियो है। इन रे अगले हफ्ते ताई मध्य और उत्तरी भारत ताई पहुंचने खातिर परिस्थितियां अनुकूल बणियोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून ने आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करेला। ओ मासिक रेडियो कार्यक्रम रो 135वो एपिसोड वेला। कार्यक्रम रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला

जाओ, लोग जागरूक हो और जागरूक होनी भी पड़ेगो, क्योंकि ये नशे की वजह से ही घर परिवार में भी आग लाग जाओ छे, घर परिवार भी बर्बाद हो जाओ छे। जो भी अगर वो युवा छे या बच्चा बच्चा को पिता छे या कोई भी छे, देख वो नशा की लत लागी तो निश्चित रूप से वो घर का बच्चा बच्ची, माता पिता, महिला सब परेशान रहेगी। वो तो परेशान रह जी रही छे, लेकिन अड़ोस पड़ोस का गांव का वो भी सब परेशान रह छे। आज नशेड़ी कहता है देखकर नशो न मिले तो चाहे घर का बर्तन हो, घर की काई भी चीज और घर न न मिलेगा। एक दिन घर का बेचता बेचता फिर गांव का बेचवा लग जाओ छे, तो गांव में खेत छे, कल्याण छे, घर छे, कहाँ से भी चुरार अपना नशा को इंतजाम करे छे। तो साथे हूँ इका जो दुष्परिणाम छे सामाजिक भी छे, आर्थिक भी छे, शारीरिक भी छे, और यह दुष्परिणाम जो छे अपना वो घर का बच्चा बच्ची, माता पिता, महिला सब परेशान रहेगी। वो तो परेशान रह जी रही छे, लेकिन अड़ोस पड़ोस का गांव का वो भी सब परेशान रह छे। आज नशेड़ी कहता है देखकर नशो न मिले तो चाहे घर का बर्तन हो, घर की काई भी चीज और घर न न मिलेगा। एक दिन घर का बेचता बेचता फिर गांव का बेचवा लग जाओ छे, तो गांव में खेत छे, कल्याण छे, घर छे, कहाँ से भी चुरार अपना नशा को इंतजाम करे छे। तो साथे हूँ इका जो दुष्परिणाम छे सामाजिक भी छे, आर्थिक भी छे, शारीरिक भी छे, और यह दुष्परिणाम जो छे अपना समाज के लिए बहुत घातक छे। ये वजह से जो नशीली दवा छे वहाँ को दुरुपयोग न होनी चाहिए। और इके लेकर आपन कहता है जो आपने युवा पीढ़ी छे, बच्चा बच्ची छे, वहाँ कहता है सभ्या कहता है समझानी पड़ेगो कि भाई नशा से दूर रहो। और अगर कोई भी गिरोह अपना आसपास का क्षेत्र में ऐसी दवाओं को जो छे वो बेचे छे, तो कि आपने कहता है जो सूचना छे वो पुलिस ताई देनी चाहिए कि भाई यो गिरोह छे, यो सक्रिय छे यहाँ, और यो यहाँ नशीली दवाओं को जो छे सप्लाई यहाँ पर कर रहे छे। तो उनसे एक तो नशीली दवाओं की सप्लाई रुकेगी, दूसरी चीज नशा की तरफ जो युवा पीढ़ी जा रही छे वह युवा पीढ़ी भी न जाओगी। और जो आज ये गांव में, शहर में, मोहल्ला में चोरी चकारी की जो घटना हो रही है वहाँ पर भी काफ़ी हद तक नियंत्रण होगो। और नशेड़ी ई कला कोई कई तरह का सामाजिक अपराध भी कर बैठा है। नशा की हालात में वो अपना परिवार पर में भी अपराध कर ले छे, तो समाज में भी अपराध कर ले छे, क्योंकि वहाँ कहता है नशा की जरूरत रह छे। और नशा की जरूरत के लेकर वो कहीं भी कर गुजर सकता हो, क्योंकि नशा करवाड़ा की जो शारीरिक स्थिति हो जाओ छे वो अभी इन स्थिति की हो जाओ छे कि वो कोई काम का न, वो को सिर्फ काम छे कि नशो करबो और जो ही नशो उतरियो वापस नशो करबो। तो ये वजह से आपने कहता है जो नशो छे वो नशा से

कर पाता है। तो खरपतवार अगर प्रॉपर कंट्रोल है तो सोयाबीन अच्छा उत्पादन दे सकती है। इसके अलावा सिंचाई की सामान्यतः ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु फिर भी अगर खेत में नमी है, कोई ड्राई स्पेल आया, तो एक आधी इरीगेशन अपन दे सकते हैं। अब खरपतवारों के बाद में कुछ कीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गर्डल बीटल है। तो खेत की प्रॉपर वाच रखने की ज़रूरत रहती है, खेत की में आप डेली जाके देखो, अगर कीट लग रहा है तो स्प्रे करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, मौसम का बहुत प्रभाव रहता है इनमें, तो खेत में कीट आया ही नहीं है तो अपन बिना मतलब स्प्रे करने से कॉस्ट बढ़ाने की से मतलब नुकसान ही अल्टीमेटली होता है। तो अगर खेत में कीट प्रकोप एक आध पौधों पे देख सकते हैं, 10-20 पौधों पे देख सकते हैं, तो कीट का प्रकोप अगर बढ़ रहा है तो मतलब शुरुआत होगी इनिशियल स्टेज पे भी है तो अपन स्प्रे कर सकते हैं। तो गर्डल बीटल जैसे है, इससे बचने के लिए अपन इंसेक्टिसाइड, जैसे बहुत सामान्य इंसेक्टिसाइड भी अपन खूब है रिकमेंडेशन में, जरूरी नहीं है दो दो तीन तीन इंसेक्टोसाइड को मिला के डालने की, पर अगर दो तीन प्रकार के कीट लग रहे हैं तो कीटनाशी जो है ऐसी सिस्टमिक कीटनाशी उपयोग में ले सकते हैं, जैसे क्लोरएंट्रिनिलीप्रोल 100 मिलीग्राम मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। अगर डिजीज, सामान्यतः सोयाबीन में बहुत विशेष कोई रोग होता नहीं है, पर फिर अगर सीड ट्रीटमेंट करके बुआई की है और क्रॉप रोटेशन का उपयोग किया तो अगर कीट नहीं लग रहा तो स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, या कीट वो रोग अगर रोगग्रस्त पौधे नजर आए खेत में तो अपन जो पौधों को दिखा के जो है वैज्ञानिक को दिखा

कर पाता है। तो खरपतवार अगर प्रॉपर कंट्रोल है तो सोयाबीन अच्छा उत्पादन दे सकती है। इसके अलावा सिंचाई की सामान्यतः ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु फिर भी अगर खेत में नमी है, कोई ड्राई स्पेल आया, तो एक आधी इरीगेशन अपन दे सकते हैं। अब खरपतवारों के बाद में कुछ कीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गर्डल बीटल है, तो खेत की प्रॉपर वाच रखने की ज़रूरत रहती है। खेत की में आप डेली जाके देखो, अगर कीट लग रहा है तो स्प्रे करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, मौसम का बहुत प्रभाव रहता है इनमें, तो खेत में कीट आया ही नहीं है तो अपन बिना मतलब स्प्रे करने से कॉस्ट बढ़ाने की से मतलब नुकसान ही अल्टीमेटली होता है। तो अगर खेत में कीट प्रकोप एक आध पौधों पे देख सकते हैं, 10-20 पौधों पे देख सकते हैं, तो कीट का प्रकोप अगर बढ़ रहा है तो मतलब शुरुआत होगी इनिशियल स्टेज पे भी है तो अपन स्प्रे कर सकते हैं। तो गर्डल बीटल जैसे है, इससे बचने के लिए अपन इंसेक्टिसाइड जैसे बहुत सा

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जय माला कार्यक्रम में अब सुनिए अगला और अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज है राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है बाबू।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के तहत गुलदस्ता में आज पेश खिदमत है कुछ चुनिंदा गैर फिल्मी गजलें। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। सामईन कराम, लीजिए समाद फरमाइए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में ये गजल। शायर हैं निदा फाजली, मौसिकार जगजीत सिंह।

करने वाले आपके प्रस्ताव की मैं निंदा करती हूँ। क्यों है? और आपके इस प्रस्ताव पर आपके दिमाग की इस उपज की भर्त्सना करते हुए प्रस्ताव को ठुकराती हूँ। सुनिए, ये मैं क्यों करती हूँ? आपके बीड़ी के टुर्रों की बदबू से बचने के लिए खुशबू वाले प्रसाधन जरूरी हैं, और समय के सदुपयोग के लिए बिजली का उपयोग

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र है FM 103.2 MHz पर। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं और अब समय है फिल्म संगीत का।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र है FM 103.2 MHz पर। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं और अब समय है फिल्म संगीत का।

0: मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
0: ड्रोन आधारित
1: के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा

79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देशभर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या